0: ये लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती।
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट।
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: ले लो, इस पे साइन कर दो।
1: क्या लिखा है इस कागज में?
0: इसमें लिखा है कि तुम सीज फायर के लिए तैयार हो और अब लेबनान और ईरान पर हमले नहीं करोगे।
1: भाई तुम्हें याद है हमने कितनी बार कहा था कि मिडल ईस्ट में शांति आसान नहीं होती?
0: तुम साइन करोगे या नहीं?
1: तुम्हें याद है वो एक एक हमला, वो एक एक धमकी, वो एक एक रॉकेट?
0: आए तुम साइन करोगे या नहीं?
1: हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा। जाओ पहले उस हिजबुल्ला के साइन लेकर आओ जो लगातार हम पर रॉकेट बरसाता है। जाओ पहले उस हमास का साइन लेकर आओ जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। उसके बाद मेरे दोस्त तुम जिस कागज पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा।

0: उसके साथ ही शशांक जायसवाल और टोटल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छह लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर है और इन छह नेम्ड अक्यूज में से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दूसरी तरफ एसआईटी गठित कर दी गई है कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे और किसकी वजह से हुई। वहीं तीसरी तरफ इन लापरवाही बरतने के लिए जो एक्शन है वो भी शुरू हो चुका है। एलडीए और बिजली विभाग के जो जेई है एई है और इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट के इंदिरा नगर के एफएसएसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तमाम कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, 15 लोगों की जान चली गई। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात घटनास्थल का मुआयना किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने मौके का मुआयना करते हुए इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उसी का नतीजा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी गठित हुई और एफआईआर में नेम्ड छह एक्यूज में से तीन की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जी
1: संतोष, हमारे साथ बने रहिए। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन। अ टू मेंबर एसआईटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज इन दिस केस। एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग सम मोर न्यूज ऑन द स्टोरी। And four people have been arrested as authorities intensified action over the devastating fire that tore through a three-story commercial building in Lucknow, killing 15 people, including students, and injuring 9 others. Police said that the three arrested accused, Ram Krishna Upadhyay, who's 43-year-old, Virendra Prasad Shukla, who's 62-year-old, and Tushar Krishna Jaiswal, who's 31-year-old, are joint owners of the building located in Aliganj, which is a posh locality in Lucknow. A fourth accused, identified as Suresh Kumar Sahu, was arrested. The building housed an animation training center on the upper floor, while a pet shop and a clinic operated on the lower floors. In fact, some pets have also been killed in this fire tragedy, as per reports, because there was a pet shop and a clinic also on the ground floor that was operational. My colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, char logo ko giraftar kar liya gaya hai, in logo ka kya role tha, ye kya ye is building ke malik hain?
0: देखिए, इस मामले में जो चार लोग गिरफ्तार किए गए उसमें मेन जो मालिक है ये रामकृष्ण शुक्ला है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो शुक्ला है ये मेन मालिक है, लेकिन जो बाकी के तीन लोग हैं, चाहे वो तुषांक जायसवाल हो या राम साहू हो, ये तमाम जो तीन अन्य लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें थी जो यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे और बिना सेफ्टी मेजर्स लिए, फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। यही वजह थी कि कल जब आग लगी तो वहां पर आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और बच्चों को कूद करके बाहर निकलना पड़ा। जो लोग उसमें फंसे हुए थे उनको कूदना पड़ा, दूसरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ी और कई लोगों के दम घुटने से, जो 15 लोगों की मौत हुई है वो ज्यादातर दम घुटने से मौत हुई है। जो अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि दम घुटने की वजह से, यानी कि वो निकल नहीं पाए। जो एग्जिट पॉइंट था वो भी सही नहीं था, एग्जिट पॉइंट बना नहीं था, कोई एग्जिट गेट इमरजेंसी गेट नहीं बना हुआ था। तो यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। जो मेन जो बिल्डिंग के मालिक है विनीत शुक्ला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा तीन अन्य जो इसके जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी
1: जी संतोष, हमारे साथ बने रहिए एंड सम मोर न्यूज कमिंग इन ऑन दिस स्टोरी। And four government officials have also been suspended. So in a parallel administrative action, Chief Minister Yogi Adityanath has ordered the suspension of four government officials over the alleged lapses linked to the incident. Those suspended are Gaurav Kumar, Executive Engineer, Janakipuram, Kamlendra Kumar Singh, who is the Food Safety and Standards Officer, Indira Nagar, Anil Kumar, Assistant Engineer, and Pramod Pandey, who is the Junior Engineer. Officials said that more disciplinary action could follow depending on the findings of the investigation. My colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, char government officials ko suspend kar diya gaya hai, lekin bada sawal abhi bhi yahi hai ki hamesha action ghatna ke baad kyu liya jata hai, koi preventive action kyu nahi liya jata hai? Teen hafte pehle humne dekha Delhi mein jo hadsa hua jisme 21 logo ki jaan gayi, uske baad Lucknow mein bhi dikhaya ja raha tha ki kafi inspection kiya ja raha hai authorities ki taraf se, lekin agar 3 hafte baad aisa incident samne aa raha hai to wo kya wo inspection सिर्फ एक नाटक था?
0: बिल्कुल, जब ऐसी होती है, लेकिन असलियत में जब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, एक डिब्बा नुमा एक बॉक्स के डिजाइन में बॉक्सेस बन जाते हैं, तो उसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन

0: made the situation even worse. My colleague Samarth Srivastav is now joining us with more details on this. Samarth, the Uttar Pradesh government is now in action. Four people have been arrested. We're learning that an FIR has also been filed with several charges being pressed. But the big question still remains that why take action after the tragedy has already struck? Why not beforehand?
1: Well, exactly. That has been the case in the state of Uttar Pradesh. We have seen many incidents. Similar incidents happened in Ghaziabad few days and few weeks before. Similar incident happened in Jaipur, we saw. So a lot of incidents have happened. But the point is, the authorities remain active for 1 week. But after 1 week, what's the answer? They don't have any answer. Yes, the SIT has been formed.
0: Stay with us, my colleague Santosh Sharma is in fact inside the ill-fated building in which the fire had erupted and claimed 15 lives. Let's take a look.
2: यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था. इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है. इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से और कोई रास्ता था ही नहीं. ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए. और ये अब आपको रास्ता दिखाते हैं. ये रास्ता है और इस रास्ते के जरिए ये एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है. मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिए. ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है. इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था एक बेसमेंट भी बना हुआ है. अंदर देखिए आपको बेसमेंट भी में भी ले चलते हैं. अंदर बेसमेंट है. ये नीचे मतलब तीन फ्लोर की ये बिल्डिंग उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया और ये बिल्डिंग बनी हुई है. ये नीचे आते हैं. नीचे आकर के रास्ता ये बेसमेंट का है ये रास्ता. और इस बेसमेंट के रास्ते से आप देखिए समझिए कि ये कैसे समझाने की कोशिश करते हैं. ये नीचे जब जा रहे हैं तो ये छोटे बच्चों का जो शॉप है कपड़ों की शॉप है टॉयज शॉप है ये तमाम चीजें यहाँ गोडाउन में रखी गई है इकट्ठा की गई है. तो ये टोटल ये एक छोटा सा बॉक्स नुमा ये कॉम्प्लेक्स है. इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और एंट्री और एग्जिट का एक गेट. तो ऐसे में जब हादसा हुआ तो 15 लोगों की दम घुटने से जान चली गई. और ये आपका है
3: जी सर? नहीं मेरा नहीं है सर. हम तो नगर निगम कर्मचारी हैं.
2: नगर निगम की तरफ
3: जी जी पानी भरा हुआ था. हम ये इसे खींचने आए हैं बस.
2: अच्छा ये बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ
3: है. जी जी ये इतना पानी था कम से कम आधा फुट रह गया है बस.
2: अच्छा अब देखिए आधा फीट पानी है अंदर और आपको अंदर ये जो है ये पूरा पूरा पानी भरा हुआ है. आप देखिए ये पाइप लगा हुआ है. तो पाइप से ये पानी निकालने की कोशिश की जाए. पूरा पाइप डूबा हुआ है. देखिए ये इतना पानी भरा हुआ है. क्योंकि कल फायर ब्रिगेड ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया. पानी लेकर गया तो ये बेसमेंट में चला गया. तो ये तस्वीरों के जरिए ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं. उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी. मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था. और ये बॉक्स रूमा था. एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं कोई जगह नहीं. इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी. सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है. और अब आपको वो रास्ता एक बार फिर से बाहर ले जा करके संजय से कहेंगे कैमरा पर्सन से कि बाहर का रास्ता एक बार बहुत महत्वपूर्ण है इस बॉक्स के लिए. कि जिस तरीके से ये बॉक्स नुमा ये डिब्बा नुमा ये पूरे बिल्डिंग बनाई गई. आप सोचिए कि जो लोग आए थे जो लोग फंसे थे वो क्यों उनकी जान चली गई. फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनको निकालने के लिए जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी. और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था. और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ. ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके. यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है. तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया. और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी. दूसरी चीज ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए ये पूरी आग लगी हुई है. आग लगी हुई थी उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया.

0: कहा जा पूरा ये अनदेखी नियमों की अनदेखी जो कायदे कानून थे जो एलडीए की लापरवाही तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो जिला प्रशासन हो उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज तक।
1: माई कॉलीग संतोष शर्मा रिपोर्टिंग फ्रॉम इनसाइड दिस इल-फेटेड बिल्डिंग वेयर द फायर हैड यस्टरडे इरप्टेड। दीज आर द विजुअल्स ऑफ द फायर एंड वी शोड यू इंडिया टुडे वाज एट द स्पॉट एट द मिसहैप स्पॉट एंड वी शोड यू हाउ दिस वाज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इट वाज अ रेजिडेंशियल it was supposed to be a residential property, but instead there was a commercial complex that was running for over a decade. And we showed you the staircase also. You can see how narrow the staircase was, as my colleague Santosh Sharma was showing from inside the building. And that was the only escape route for those trapped inside. But even then, the escape could not happen because there was automated locked door and that stopped working. And hence, the youngsters were all trapped inside and they were forced to even jump out of the building, as can be seen in these visuals. In fact, my colleague Santosh Sharma also showed the exit gate where there were so many compressors of the air conditioners that were placed. So that clearly shows that how no rules and regulations were followed, and what we're also learning that there was not even a fire NOC of this building. So many such glaring lapses are now emerging. Firstly, it had to be a residential property that was supposed to be built on this land, but instead a commercial complex was built. There was no fire NOC, just one exit that was also with an automated locked door that stopped working and eventually trapping all the youngsters inside. There was no escape route, no emergency door, no emergency route, even the main gate, the main exit. My colleague Santosh was showing in that report. It also had several of the air conditioner compressors at the main exit. So even that was not free. The staircase, the only staircase that was meant for the exit and even entry, was even so narrow that even that would, if the gate would have been open, still there would have been much difficulty for the trapped youngsters to escape from the building. So many such glaring lapses now emerging. My colleague Santosh Sharma, who is in fact present at the mishap spot, is also now joining us. Santosh, हमने आपकी अभी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने अंदर से विजुअल्स दिखाए जिसमें कि जो सीढ़ियां हैं वो इतनी पतली हैं कि अगर गेट खुला भी होता तो भी काफी मशक्कत करनी पड़ती लोगों को बाहर निकलने के लिए।
0: देखिए बिल्कुल लोग निकल ही नहीं पाए। ये जो बॉक्स नुमा ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, ये बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर में कोई इमरजेंसी गेट नहीं, कोई एग्जिट गेट नहीं, कोई ऐसा इंतजाम नहीं कि इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो दूसरा गेट कैसे खुलेगा। ये गेट तो बंद नहीं था लेकिन लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। अगर कहीं दूसरा गेट होता, एक तरफ से धुएं में और आग ने रास्ता रोक दिया था, तो शायद वहां से लोग निकल सकते थे, लेकिन वो निकल ही नहीं पाए। पूरे गेट पर एसी के पैनल लगे हुए हैं, एसी के पैनल की वजह से वहां पे आग और तेजी से फैली और जिसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई। एक बार मैं तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करता हूं, संजय से कहूंगा कि जरा सा तस्वीरें पास में लेकर के जाएं। और वो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को आप देखिए बेसमेंट में बना हुआ है, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर का फोर्थ फ्लोर तक ये पूरा स्ट्रक्चर है और टोटल बॉक्स स्ट्रक्चर है। बॉक्स है मतलब एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, और वहां से जब आप जाते हैं तो एसी का पैनल आपको दिखाई पड़े, एसी के पैनल लगे हुए हैं। एसी के पैनल लगे होने के की वजह से रास्ता वैसे भी कम चौड़ा था, रास्ता बहुत सकरा हो गया था, और उसके बाद जब एसी के पैनल लग गए तो और रास्ता छोटा हो गया। इसके बाद जब इमरजेंसी हुई तो लोग फंस गए, ऊपर फंस गए लोग, बाथरूम में फंसे, फिर धुएं ने उनको कहीं से निकल नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात कि जो 15 लोग जिनकी मौत हुई है वो दम घुटने से मौत हुई है। सबसे बड़ी बात, दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई, जलने से किसी की मौत नहीं हुई, दम घुटने से। अगर वो निकल पाते तो उनकी जान नहीं जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ एग्जिट पॉइंट अगर एक इमरजेंसी गेट होता तो ये जाने नहीं जाती। एग्जिट गेट अगर होता, उनको निकलने के लिए रास्ता दिया गया होता तो जिंदा होते लोग, कई घरों के चिराग जो बुझ गए हैं वो जल रहे होते। आज मातम पसरा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश और लखनऊ में, जिस तरीके से घटना हुई है, घरों के जो बच्चे बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे वो चीख पुकार कर रहे थे, अपने परिजनों को फोन कर रहे थे कि हम यहाँ फंस गए, हमको बचा लो। और उसके बाद भी अंदर नहीं जा पाए क्योंकि धुआं इतना था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आने में मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद दूसरे तरफ से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोगों ने बचाया, लोगों को निकाला, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उसके दमकल कर्मी दीवार तोड़कर अंदर जाते तब तक ज्यादातर लोग दम तोड़ चुके थे दम घुटने से। तो अब ये पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सवालों के घेरे में है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसलिए सवालों के घेरे में क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया बता करके ही इसका नक्शा पास कराया गया एलडीए ने। तो जिस एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर जिम्मेदारी थी ऐसे लीगल कंस्ट्रक्शन की, ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने की, वो क्या कर रहा था जब रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शा पास करा करके कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पर 3 दुकानें, कोचिंग सेंटर, पेट्स की शॉप, उसके बाद एक स्टूडियो चल रहा है, नीचे शॉप्स हैं।
1: बिल्कुल संतोष, कई सारे सवाल उठते हैं इस पूरी घटना के बाद जिनका जवाब देना पड़ेगा अथॉरिटीज को। संतोष हमारे साथ बने रहिए, इनफैक्ट देयर इज सम मोर न्यूज कमिंग इन। And according to police sources, the fire was caused by a short circuit and other causes are also being investigated. So the fire is suspected to have been caused by a short circuit in an air conditioner which was located in the basement. The building that caught fire is located in the Aliganj Sector D area. A pet shop and a clinic occupy the basement ground and the first floor. So the second floor houses a coaching center named Learning Space and the Head Hopper Studio. The studio handles 3D art production and game asset outsourcing. Trapped by the fire, students locked themselves inside a bathroom and one student saved his life by jumping from the first floor. He fell onto a metal grill below and sustained serious injuries. But that's the big update that's coming in, that according to police sources, the fire was in fact caused by a short circuit in one of the air conditioners that was present in the basement. My colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, bahut badi update samne aa rahi hai ki ye jo aag lagi hai iske piche short circuit tha jo ki ek AC mein hua tha jo basement mein tha.
0: देखिए शॉर्ट सर्किट, इस टेम्परेचर हाई है, एसी चल रहे हैं, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट एक बहुत घटनाएं आम हो जाती हैं कि, लेकिन उसके बाद जब शॉर्ट सर्किट होने के बाद उससे निपटने के क्या इंतजाम है, कॉमर्शियल एक्टिविटी जहां पर हो रही है वहां पे आग लगने के क्या इंतजाम है, ये बहुत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आप देखिए कि कैसे इंतजाम हो पाएंगे, पूरा आप एसी के पैनल देखिए, पूरा जाल बिछा रखा था, ये आप देखिए कि पूरे कितने एसी के पैनल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 एसी के पैनल है जो गेट पर लगे हुए हैं। तो अब एसी के पैनल में या कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी, तो लोग फंसेंगे नहीं तो क्या होगा। ये 11 एसी के पैनल इस तरीके से लगाए गए हैं और ऊपर लगे हैं, साइड में लगे होंगे, बेसमेंट है, बेसमेंट में बनाया हुआ है, तो यही एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से लोगों को आना और जाना, और जब यहां पर आग लग गई, लोग जो पीवीसी बना हुआ था, जो वुडन वर्क था, वो बिल्कुल टपक रहा था। ये जो आप एक रास्ता, ये जो तार देख रहे हैं, ये तार, कई लोगों ने इस तार को पकड़ करके नीचे आए हैं, जिनको चोटें भी लगी, जो तार है ये उनके लिए जान बचाने का एक जरिया बना, इसको पकड़ करके बच्चे नीचे कूदे हैं, नीचे किसी तरीके से घिसकते हुए आए हैं, घायल है, इंजर्ड है। और ऐसा नहीं है कि ये एक बिल्डिंग है, बगल में देखिए ये इम्प्रेस कंप्यूटर है, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, पूरे रेजिडेंशियल एरिया में, पूरी जहाँ पे लोग कॉलोनी बना के रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं बगल में। आप सोचिए कि ये अगर ये पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी है, अलीगंज का सेक्टर डी रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल इलाका है ही नहीं, नक्शा भी इसका पास है, इसका नक्शा पास है लेकिन किसमें, रेजिडेंशियल में। तो इसका रेजिडेंशियल नक्शा पास होकर के जब कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की क्यों नहीं निगाहें गई कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक नहीं है, बगल में ही आप देख लीजिए कि इम्प्रेस कंप्यूटर है, इसमें अलग कंप्यूटर की शॉप खुली हुई है, ये कहीं से रेजिडेंशियल नजर नहीं आ रहा है। तो पूरे मतलब कहा जाए कि ये एक घटना हो गई है। तो मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, लखनऊ में 1000 से ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स बने होंगे जो इसी तरीके से रेजिडेंशियल इलाके में बने हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वहां पर ऐसी ही घटनाएं होंगी, ऐसे ही लोगों की बेरहम
1: Santosh, bilkul. So this is not just the only building that is operating as a commercial complex in a residential area. In fact, just besides the building is another commercial building that is also operating in a residential area like the Aligarh. Santosh, hamare saath bane rahiye. So some more news coming in on the story. And we now get you the tragic tale of fire victim Abdul Rehman. He was the sole breadwinner of his family. His death leaves family devastated. He cared for his specially abled father and sister, the young man who carried an entire family's hopes. 4 years of hard work ended in tragedy. From student to employee at the same institute, earned a living to support his loved ones, the family has now lost its only source of income.
2: हम लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस में हैं. रहमान जो कि अपने घर का अकेला कमाने वाला था और उसकी दर्दनाक जलकर मौत हो गई. ऐसे में उनके परिजन जिनके पिता विकलांग हैं और बहन है जिनकी जिम्मेदारी थी शादी की, घर का क्या होगा नहीं पता. उनके जो भाई हैं कज़न हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं. क्या नाम है आपका?
3: जी मेरा नाम मोहम्मद हाजिम सिद्दीकी है.
2: ये बताइए कि आप लोग कैसे पता लगा और कब से जॉब कर रहा था?
3: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था. अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया.
2: तो घर में क्या स्थिति है उनके घर?
3: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी 2-3 महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था.
2: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी, क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
3: क्या हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जाँच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो. परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल
2: करता था.
3: बहुत लापरवाही हुई है सभी से. सब हमारी घृणा है कि जो बच्चे आज दुनिया में नहीं रहे हैं ये भी हमारे देश का भविष्य थे, और जो आग लगी है इसमें बड़ी लापरवाही हुई है. और मुझे ये लगता है कि जो ट्रांसफार्मर आगे रखा हुआ था शॉर्ट सर्किट की वजह से, कई जगहों पे लखनऊ में आप देखते होंगे कई जगहों पर ट्रांसफार्मर खुली जगहों पर रखे होंगे, नंगे तार दिखते हैं, नंगे तारों की वजह से कई हादसे ऐसे हुआ करते हैं, अक्सर हादसे हुआ करते हैं. अभी कुछ दिन पहले दुबग्गा पे हुआ था, कई जगह पे ऐसे हादसे हुआ करते हैं. तो सरकार से हमारी अपील यही है कि सरकार कोशिश ये करे कि लखनऊ कई शहरों में जिस तरीके से नंगे तार और शॉर्ट सर्किट गर्मी की वजह से होते हैं,
2: बिना फायर एनओसी के, बिना रेजिडेंशियल कॉमर्शियल के सब कुछ चल रहा था वहाँ पर, उसको लेकर
3: जी ये गलत तरीके से जो लोग ये लोग अपनी बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, जो तरीके से ये सब बिल्डिंगों में कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए. पूरी तरीके से
2: जी
3: बिल्कुल बड़ा एक्शन लेना चाहिए. और योगी जी वहाँ पहुँचे भी थे, वो अलीगढ़ में थे, हमें पता चला उसके बाद पहुँचे भी, मगर उनको जी बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए जैसे सभी जगह योगी जी करते हैं, तो यहाँ भी करें. और जिन बच्चों को, जो बच्चे भी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, और जो इसमें अगर आरोपी हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आगे उनको जो है मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ भाई.
2: तो ये हमारे साथ परिवार के मौजूद साफ तौर से मानना है कि बड़ी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ करें, जिसकी वजह से अब उनके परिवार को कोई भी उनका अकेला सहारा था जो चला गया. लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष.
1: So that was the kin of the deceased Rehman, who's demanding strict action. He's also blaming the naked wires and the transformers that were near the building. In fact, he's asking the government to take action against all those naked wires and the transformers across Lucknow. And he's also demanding maximum ex gratia for the family, because Rehman was the sole breadwinner of this family, and he was taking care of his specially abled father and sister. So this is just one of the stories of the 15 people who have died in this tragedy. And we now get you a report from inside this ill-fated building. India Today is the only channel that got inside of this building in Lucknow. Take a look at this report.
0: देखिए बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था और यहां से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट प्वाइंट था। इसी एंट्री एग्जिट प्वाइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी में भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट। टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया। ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि 3 फ्लोर का बेसमेंट, 3 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, 4 फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स रूम था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री।
1: And we now get you the first images of the arrest of the Lucknow fire accused. We will now show you the 3 Lucknow building owners who have been nabbed by the cops. This includes Ram Upadhyay, Virendra Shukla and Tushar, who have now been arrested. And this building was owned by 3 accused that had an animation center. The 4th accused, Suresh Shukla, has also been arrested. So these are the visuals of the accused who have now been nabbed by the Lucknow cops. And 4 people have been arrested. 3 of them are building owners who have now been arrested. This includes Ram Upadhyay, Virendra Shukla and Tushar. And you can see in these visuals on the right side of your screens, these are the accused. The building was owned by 3 people who have now been held. And the 4th accused, Suresh Shukla, has also been arrested. So action is being now taken against the owners of the building and those who owned the animation center that was operating in this building that was supposed to be a residential property, but instead a commercial complex was running. And in fact, this is not the only building in where a commercial complex was running for over a decade. Even just besides this this ill-fated building is another commercial complex that is operating in this residential area, which is Aliganj area in Lucknow. So action is now being taken by the concerned authorities across Lucknow. A drive has been launched, but as of now in this matter, 4 people have been arrested. This includes 3 building owners, and the 4th one has also been arrested. His name is Suresh Shukla. We're showing you the visuals also of the people who have been arrested on the right side of your screens. 15 people, remember, have lost their lives. All these 15 people were youngsters who were in their 20s, who have lost their lives. Some were even the sole breadwinner. We showed you the family's allegations and how this was there was no escape route, and how there were also naked wires and transformers just outside the building. And big revelation in Lucknow fire probe. Auto locking gate trapped youngsters inside. Biometric entry door is now under probe scanner. No emergency exit left the victims with no escape. Narrow staircase hampered the evacuation and many were even forced to jump from windows to escape the fire. Smoke inhalation also left several unable to flee, and there was also no fire safety compliance that eventually led to the death of 15 people. So those are the lapses. The biggest lapse is also the auto locking gate that trapped the youngsters inside, because the door was not opening. The door stopped functioning because there was supposedly a power cut because of the fire, and the biometric entry door is also now under the probe scanner. And what is also important to note that there was no emergency exit. There was just one door that was also a biometric door that had stopped working. There was no emergency exit that left the victims with no escape. And even the staircase, as my colleague Santosh Sharma, who was inside the building, was showing, even the staircase was very narrow that hampered the evacuation. And hence, everyone was trapped inside. Many even were forced to jump from the building, as can be seen in the visuals from Lucknow. So let's understand what exactly unfolded in Lucknow yesterday. So a fire broke out, spreading rapidly throughout the building. So the blaze escalated quickly, engulfing the entire building, which was a three-story building, and there was a basement also. The biometric auto-locking main door was shut after the fire, so the main entrance became inaccessible when the locking system remained engaged. And those inside could not use the main exit to escape because the gate was locked. The occupants were unable to evacuate through the building's only exit route, and there was no emergency exit route which left the occupants trapped. So absolutely no alternative escape path was left with people, and there was no safe way out. The smoke quickly filled the staircases and the offices. So thick smoke spread fast, reducing the visibility and also making breathing difficult. Many were forced to break windows or jump. So those visuals had also emerged. Those were the initial visuals, in fact, that had emerged, in which some youngsters were also seen jumping from the building. So that was their desperate bid to save their life. Some even took shelter inside the bathroom. So individuals sought temporary refuge in enclosed places to avoid smoke and flames. And as my colleague Santosh Sharma was also mentioning, that the 15 deaths have not happened because of the fire. That has happened because of inhalation of smoke and because of suffocation. That has led to the death of the 15 people. The rescuers had to use ladders, ropes to evacuate those trapped. So emergency teams carried out difficult rescue operation from the upper floors and also the inaccessible areas. Several pets at the clinic and shop also died in this fire. So there was also a pet shop and a clinic on the ground floor of this building. So many animals who were trapped inside the premises were unable to escape the blaze and eventually died. And let's also understand the deadly side of the auto-locking door that was in this case. The auto-locking doors can seal exit if they fail to unlock. The power failure or system snag can prevent immediate escape, and that is very much possible in case of fire. The biometric access may also stop working during emergencies like this. Every second used to open locked door allows smoke to spread, because it just does not remain open. Even if it's open once, you will have to use your fingers or cards again and again to open the door, and that eventually leads to delay in evacuation. A locked exit can force people to jump from windows, as was seen in this tragedy. So auto-locking doors' role is also now under the scanner. There was no escape route, also no emergency exit, just one route, and that also had an auto-locked door. Even the staircase was so narrow that also led to difficulty in evacuation. And the 15 people who have died, they have not died from burn injuries or the fire. They have, in fact, died from suffocation, from smoke inhalation that made the situation worse. Many were even forced to jump from this building. In fact, let's take a look at this ground report by my colleague Santosh Sharma from the incident site.
0: Fire brigade mauke par pahunchi. Fire brigade chah kar bhi kuch nahi kar pai, kyunki unko nikalne ke liye jo log phase hue the piche ki taraf, unko nikalne ke liye koi jagah nahi thi. Aur ye jo entry exit point hai, isi se log nikalne ke liye aur bahar aane ke liye rasta tha. और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ, और ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके. यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है. तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी. दूसरी चीज, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये पूरी आग लगी हुई है. आग लगी हुई थी, उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया. तो कहा जाता है पूरा ये अनदेखी नियमों की, अनदेखी जो कायदे कानून थे, जो एलडीए की लापरवाही, तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई।
4: कैसे आग लगी नहीं पता चली आप लोगों को?
5: नीचे वाले फ्लोर में।
4: नीचे वाले फ्लोर में आप लोग सब वहाँ जॉब करते थे? जॉब करते थे। कैसे मतलब कितनी भयंकर थी आप लोग उस समय, क्या समझ पाए अचानक से कहाँ भागना है क्या करना है? हमारे भागने का रास्ता कोई था? एग्जिट विंडो वगैरह कोई नहीं था? परिस्थिति क्या थी? क्या कोई बचाने के लिए आया? कैसे अंदर कुछ पहुँच पाए?
5: फोन कर रही थी
6: मैंने सब देखा जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
7: मेरे सीनियर ने आके बताया कि जो है ना आग लगी है, थोड़ा यहाँ से जो है हम लोग यहाँ सिस्टम बंद करो, थोड़ा बाहर निकलना है, कुछ गड़बड़ी है। तो उस समय पता नहीं था कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है। जब बाहर निकले हैं तो देखा कि वो पूरा ऑफिस धुएं से भरा हुआ था और नीचे से ही आग से पूरा कॉरिडोर लॉक हो गया था, हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कितने बच्चे अंदर फंसे थे? कम से कम जो है ना 20 लोग अंदर फंसे हुए थे। तो सोचे 15-12 की डेड बॉडी आ चुकी है।
1: Let's also take a look at how the political leaders have reacted to this tragedy.
8: लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
1: So now glaring lapses are also under lens. Residential property converted into commercial use. So building usage was changed without infrastructure upgrades, which was needed for commercial occupancy. Main gate auto-locked during display. So the locking system allegedly restricted a critical escape route during the emergency. The main gate could open only through biometric access. So the dependence on the biometric entry and exit delayed evacuation when rapid exit was extremely essential. Inadequate staircase space was safe evacuation. So the narrow staircase can create bottlenecks, and that's exactly what happened in this case, and it hindered the movement of people escaping the fire. There was no proper emergency exit in this building, so the absence of an alternative escape route left occupants with no escape option, eventually leading to the death of 15 people. So those glaring lapses are under the lens now. It was supposed to be a residential property that was converted into a commercial complex and ran for over a decade. And with that, we're now slipping into a very short break. But do stay with us, as on the other side, we'll get you more on the Qatar oil firm, oil plant fire in which 12 Indians have been killed and many others have been injured.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: मतलब words नहीं explain करने के लिए जिस चीज़
2: In your old batting prodigy, Vaibhav Suryavanshi has now officially donned Team India's colours, earning a maiden call cap to the senior T20 IS squad for upcoming series against Ireland and England. He earlier starred for India in Sri Lanka, where he scored an 11 ball half century.
1: इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं. और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते. उसे रिएक्शन मेरा भी था, मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए. जिस चीज़ के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ. और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ. और मतलब मैं इस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. ड्रीम जैसा ही लग रहा था. और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं. और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते. उसे रिएक्शन मेरा भी था.
2: Right, that's a 15-year-old batting prodigy's moment really under the sun. We'll be getting you more on that story. A very good morning. You're watching India Today Television. I'm Sneha. Let's get started with the headlines. The top story is here. Vijay versus Uday, war of words in Tamil Nadu Assembly, where Vijay has launched a scathing attack on the opposition. Levels big corruption charge on DMK, says DMK looted TASMAC revenue for party. Udayanidhi Stalin has hit back, says don't make allegations without evidence. Another fire, but same old lapses. No emergency exits, tear space, building lacked necessary permits. Four officials suspended by the government. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is promising strictest action. 15 young lives have gone. India Today leads the fight for justice. Four arrested in deadly Lucknow fire that killed 15. Three or four were joint owners of the building. Fourth accused Suresh Sahu also arrested by the police. TMC civil war erupts. Rebels claim real TMC tag. Abhishek suspended by rebel camp. Mamata ousted as party chief. Arup Roy projected as the new TMC boss. DD's TMC responds with show cause. After Shinde's siksa against Uddhav, more netas to dump Uddhav Sena. Four legislators have skipped a huddle that Uddhav Thackeray had called. Shinde has warned. Operation Tiger a success. Uddhav fails ultimate loyalty test.

0: समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इस निष्कर्ष को भेजा जाएगा।
1: थैंक यू सर।
2: अभी तक कुछ मिला है?
0: बता दिया है। देखिए एक मिनट,
3: आप लोग से एक मिनट बात करना चाहेंगे। अब देखिए, हम लोग या तो आप लोग के लिए करते रहे या हम लोग अपना काम को करें। अब आप लोग से अनुरोध है, आपसे जो कहना था कह लिया।
4: नाउ लेट अस, आप
3: वर्क करने दीजिए, अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे। ठीक है?
0: देखिए, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे, और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देख पाए।
5: आशीष इज बैक विद अस। आशीष, यहाँ पर अभी पुलिस और एसआईटी का ये कहना है कि मामला इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पूछना चाहूंगी, अभी तक डेथ टोल 15 है आपने बताया, कितने सारे लोग इस पे घायल हैं और सरकार की तरफ से क्या सहायता की जा रही है?
6: देखिए, अभी तक जो 15 लोग हैं वो जिनकी मौत हुई है, जो पूरी तरीके से उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन तकरीबन 9 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जिसमें दिल्ली की एक जो प्रोफेशनल थी उससे हमने बात की थी और वो साफ तौर से कह रही थी कि किस तरीके से वो बचकर वहां से निकल पाई है। गरम जो तार थे जिनसे जो जल रहे थे उनको पकड़कर वो नीचे आई थी। तो इस तरीके के कई घायल हैं जिनके हाथ जल गए हैं, जिनके पैर जल गए हैं, जिनकी कमर टूट गई है। एक हमने वीडियो देखा था जिसमें एक शख्स छलांग लगा देता है बिल्डिंग से जब ये आग लगती है, तो ऐसे उसकी शख्स की जो स्पाइन है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई है और वो पैरालिसाइज होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर जो यहाँ के जो इंजर्ड हैं वो ज़रूर हॉस्पिटल में है KGMU के, और वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन ये तो साफ है कि सरकार इसमें एक बड़ी कार्रवाई कर रही है जिससे कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल थी और जिसको कॉमर्शियल यूज़ किया जा रहा था, और जबकि इसमें जो कनेक्शंस हैं उसको लेकर भी छानबीन की जा रही है। दूसरी तरफ SIT जो CM ने ड्राफ्ट की है, जिसको जांच करके रिपोर्ट CM को सौंपेगी, वह भी पूरी तरीके से अब एक एक चीज़ को छानबीन कर रही है, जिससे कि ये पता लगेगा कि जो दोषी हैं उनकी किस हद तक इसमें दोष है। दूसरा, जो फॉरेंसिक है वो यहाँ पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये घटना जब घटी थी तो कैसे जो बच्चे थे वो अंदर फंस गए थे और किस तरीके से वो बाहर अपनी जान बचाकर निकले, क्योंकि ये भी कहा गया मौके पर प्रशासन लेट काफ़ी पहुँचा, जिसकी वजह से कई बच्चों को जान गंवानी पड़ी और ये भी हुआ कि कई बच्चे घायल भी हुए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब SIT की टीम जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी साथ में मौजूद है और घायलों का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।
5: बने रहिए आशीष हमारे साथ। इन फैक्ट वी विल जस्ट कम बैक टू यू इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ। आशीष आल्सो पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन द लैप्सेस, या एलिगेशंस दैट हेल्प केम इन वेरी लेट, दैट्स व्हाट वन ऑफ द विक्टिम्स मदर हैज आल्सो सेड। वी हैव इन फैक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग दैट वाज गटेड इन दिस फायर। संतोष सेंट अस दिस रिपोर्ट अर्लियर, लेट्स टेक अ लुक।
7: किसी का उठा नहीं पाया पहले उसने
0: बताया। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था, और यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहाँ पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है, और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी में भी ले चलते हैं, अंदर बेसमेंट है ये नीचे, मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट। टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को

0: दरकिनार करके ये बनाया गया। ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट, तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स रूमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनको निकालने के लिए जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ, उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था। और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ और ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके। यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। दूसरी चीज, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये पूरी आग लगी हुई है, आग लगी हुई थी उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया। तो कहा जा सकता है पूरा ये अनदेखी नियमों की, अनदेखी जो कायदे कानून थे, जो एलडीए की लापरवाही, तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसलिए सवालों के घेरे में क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया बता करके ही इसका नक्शा पास कराया गया एलडीए ने। तो जिस एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर जिम्मेदारी थी ऐसे लीगल कंस्ट्रक्शन की, ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने की, वो क्या कर रहा था जब रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शा पास करा करके कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पर तीन दुकानें, कोचिंग सेंटर, पेट्स की शॉप, उसके बाद एक स्टूडियो चल रहा है, नीचे शॉप्स हैं। तो एलडीए के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं।
1: 15 distraught families have been left to pick up the pieces and mourn the loss of their children. India Today spoke to the families. The victims were charred to death in Lucknow inferno yesterday. Distraught, inconsolable families have demanded strict action against the accused.
2: इस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम? क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख रेख सुविधा असुविधा की बात है।
3: कोई एग्जिट नहीं था, होता तो बच्चे निकल सकते थे आदित्य,
2: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है सब, बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
4: हमारी सिस्टर आई है, वो छोटे वाले बेटे कान दिखाना था यहीं बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो कान दिखाया, फिर उन्होंने सोचा कि लाओ जा करके भैया से भी मिल लें। फिर तब भी वहाँ जाए और वहाँ जब गई है तो वहाँ लपटे उठ रहे हैं।
5: मतलब उनकी मदर, उनकी मदर अपने बेटे के ऑफिस पहुंची तो देखा कि ऑफिस के बाहर लपटे,
4: वो सब लपटे वहाँ, वो बुझाने वो चल रहा। तब तक हम घर पर थे तो मंजिले वाले बेटे पास फोन, हाय भैया, तो वो करने लगा, हाय अरे क्या हुआ, हाय बहुत। तो हमने कहा क्या हुआ क्या, तो कहे कि बुआ क्या आदित्य वहाँ आग लग गई है बिल्डिंग में, उनके यहाँ कोचिंग वाले। लापरवाही, जब ये पता चला कि लिफ्ट है, कोई भी बिल्डिंग अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्ट चलने का सवाल नहीं था, कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं। अब वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए।
6: कैसे मतलब कितनी भयंकर थी, आप लोग उसमें क्या समझ पाए, अचानक से कहाँ भागना है क्या करना है? भागने का रास्ता कोई था, एग्जिट विंडो वगैरह कोई नहीं थी?
7: कोई नहीं थी, तो फैल था, पता नहीं कोई भी रास्ता ढूंढ और निकले गिर के निकले कैसे।
6: परिस्थिति क्या थी, क्या कोई बचाने के लिए आया, कैसे अंदर कुछ पहुंच पाए?
7: फोन कर रहे थे सबको,
6: फोन कर रहे थे
7: हमारा, बोल रहे थे कि कोई बचा ले हमें, नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा था।
8: बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली। एनिमेशन का काम करता था सर, लगभग 2.5 से 3 साल से जॉब कर रहा था वहाँ पे।
9: अभी 8 बजे पता चला है कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
6: तो घर में क्या स्थिति है उनके?
9: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था वहीं, पढ़ाई भी करता था।
6: अब परिवार की कैसी जिम्मेदारी, क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना
9: पर? हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल।
10: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय अभी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
11: मेरे सीनियर ने आके बताया कि जो है आग लग गई है, थोड़ा यहाँ से जो है हम लोग यहाँ सिस्टम बंद करो, थोड़ा बाहर निकलना है, कुछ गड़बड़ी है। तो उस समय पता नहीं था कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है। जब बाहर निकले हैं तो देखा कि वो पूरा ऑफिस धुएं से भरा हुआ था और नीचे से ही आग ऊपर की तरफ आ रही थी, धुआं से पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया था, हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो कितने बच्चे अंदर फंसे थे? कम से कम जो है ना 20 लोग अंदर फंसे हुए थे। तो सोचे 15-12 की जो डेड बॉडी आ चुकी है,
12: वो सब स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे,
11: स्टडी नहीं कर रहे सब जो है प्रोफेसर 3D आर्टिस्ट थे।
13: 7 बच्चे चोट के साथ आए थे इंजर्ड और 15 ब्रॉड डेड थे। जो ब्रॉड डेड थे वो सब पंचनामा करने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम हो रहा है। दूसरा जो 7 घायल थे उसमें से 2 को मॉडरेट चोटें हैं, 5 को मामूली चोटें थी, उनकी छुट्टी हो गई है। उन 2 में भी एक बच्ची है जिसके थाई में थी लेकिन फ्रैक्चर नहीं है, और एक दूसरा लड़का है जो ऊपर से कूदा था जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा तो एक रॉड पे गिर गया जिससे कमर के स्पाइनल कॉर्ड में उसकी इंजरी आ गई है, उसके नीचे का हिस्सा भी सुन्न है। वो थोड़ी अभी उसकी स्थिति मतलब वो खतरे से बाहर है, जान को नहीं है, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा अभी काम नहीं कर रहा है, पैराप्लेजिया हुआ है।
14: एक लड़की थी जिसको जो घायल हुई उसको बहुत विशेष चोट नहीं आई है, बाएं डोर उसमें चोट आई है, और जो एक लड़का है उसमें से उसको रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई है और वो डोर लिम्स उसकी पैरलाइज्ड, पर 15 जो है वो डेड लाए गए हैं और वो 15 के 15 स्मोक से जले हुए नहीं आए।
1: And the Lucknow building fire that killed 15 people and injured 9. Investigators are probing suspected fire safety and building norm violations. Yeah, as the probe is underway, 4 people have been arrested. 4 government officials have been suspended as authorities have intensified action over this fire. The 4 arrested accused includes Virendra Prasad Shukla, Ramakrishna Upadhyay, Tushlok Krishna Jaiswal. 1 more person, Suresh Sahu, has been arrested. According to the investigators, the structure was approved as a residential building which was being used for commercial activities. Authorities are examining whether violations of the building and fire safety norms contributed to this disaster. In a parallel administrative action, Chief Minister Yogi Adityanath has ordered the suspension of 4 government officials over alleged lapses linked to this. Those suspended are Gaurav Kumar, who is the executive engineer, Kamlendra Kumar Singh, fire standards and station officer, Anil Kumar is the assistant engineer, Pramod Pandey, junior engineer. Officials say more disciplinary action could be taken depending on the findings of the investigation. But the big question is, apart from just heads getting rolled here, will there be no criminal liability on all of these people because of whom 15 young lives have been lost? And 15 humans, several pets just below the gaming zone in a pet shop have also died in this horrific fire tragedy from the capital city of Lucknow. Arrests have been made in this case already, and we took you through the details of the four people who've been arrested over the lapses. Chief Minister Yogi Adityanath has already ordered the suspension of four government officials over the lapses that have now come to the fore. No emergency exit. And because of the biometric system, the door got locked. People died inside because they couldn't breathe as the smoke engulfed this entire building. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has mocked Stalin with a sharp anecdote. Recreate Stalin hands flashing move. Chief Minister Vijay's barbed jibe at M.K. Stalin and at Udayanidhi Stalin. He has used a story to pick his wife at Stalin. Mocks Udayanidhi on Stalin's absence. Chief Minister targets Stalin with a veiled egg. He mimics Stalin. And everybody burst into laughter in the house.
15: நேத்து எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர் பேசும்போது நிறைய பேசினாங்க. அதுல ஒண்ணு மட்டும் அரசு சொல்றதா நினைச்சுக்கிட்டு நம்மள இன்டைரக்டா ஈவில் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைய யூஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லணும்னு தோணுது. ஈவில்ஸ் ஈவில்ஸ்னு டெவில்ஸ் பேசக்கூடாது. அவங்க இருந்திருந்தா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. இல்ல யார் பர்மிஷன் பண்ணலாமா?
16: இப்பவும் பண்ணலாம், ஒண்ணும் தப்பு இல்ல.
1: I'm going straight across to Anika for more details on that story at this point in time. Anika, a jibe there taken at the former chief minister when he was not there in the assembly as well today.
17: Well, in fact, today was, it was quite the firestorm today in the assembly session with Chief Minister Joseph Vijay's reply. In fact, he has questioned the DMK as to why they failed to appoint a DGP for the last 9 months. Tamil Nadu did not have a DGP law and order, and therefore Vijay was there answering a question about the law and order issue in Tamil Nadu, where he said that the DMK fails to have the moral right to question about law and order and the rising crime in the state when they were in power had failed to appoint a DGP. Therefore, the whole house erupted into ruckus when Joseph Vijay alleged that certain party funds in every single department was diverted. Therefore, shortly after the Chief Minister made that allegation, the DMK MLAs staged a walkout led by Leader of Opposition Udayanidhi. They all walked out of the assembly as soon as Chief Minister spoke about a certain party fund that's been directed in every single department, and that starts from TASMAC. So therefore, today was really a fiery assembly session with barbs being exchanged on both sides. Udayanidhi has questioned if Vijay really has an evidence to show that there was corruption, that there was a certain party fund that was really being diverted. So therefore, evidence is being sought by the DMK to prove the charges that the TVK government is levelling against the erstwhile DMK regime. The Chief Minister did speak at length. He addressed the crimes in the state, safety of women and children. He also spoke about alleged corruption that took place in the previous DMK regime. He also spoke about the power cut issue that's currently happening in the state. Indeed, it was a fiery assembly session with the opposition parties except AIADMK, the DMK particularly staging a walkout.
1: Anaga, I'm going to leave it at that for the moment. Getting in those details and putting that into perspective is my colleague Anaga, and talking to us about the kind of drama that was witnessed in the assembly, in the Tamil Nadu assembly today. Let's take a listen.
15: நேத்து எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர் பேசும்போது நிறைய பேசினாங்க. அதுல ஒண்ணு மட்டும் அரசு சொல்றதா நினைச்சுக்கிட்டு நம்மள இன்டைரக்டா ஈவில் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு தான் சொல்லணும்னு தோணுது. ஈவில்ஸ் ஈவில்ஸ்னு டெவில்ஸ் பேசக்கூடாது. இங்க அவங்க இருந்திருந்தா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க.
16: இப்பவும் பண்ணலாம், அவனும் தப்பு இல்ல.
1: More news we're telling you about trouble as far as the Bharatiya Janata Party is concerned. BJP high command has sought a report on cross voting. More leaders leave for Delhi city amid a controversy that broke out over alleged cross voting in the legislative council election. BJP chief whip and election agents have left for Delhi on a 5 a.m. flight on Tuesday. This visit comes after summons from the party high command expected to seek a detailed explanation on the cross-voting matter. Their visit follows BJP state president B.Y. Vijendra and leader of the opposition R. Ashoka's trip to the national capital. It's a crucial meeting which is being held by the BJP regarding cross-voting in the Karnataka Legislative Council elections. Karnataka state president B.Y. Vijendra and leader of the opposition are going to be meeting. We hear the chief of the Bharatiya Janata Party, Nitin Naveen, at noon today. 11 NDA MLAs, including approximately 4 from the BJP, did not vote for the JDS Legislative Council candidate. Displeased by this, BJP leader Nitin Naveen had summoned the Karnataka state president and leader of the opposition to Delhi.
18: ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿಧಾನ ಪರಿಸರನ ಚುನಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸವಾಲು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ
1: ಸಗೆ ರಾಜ್ ಹಸ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. This cross voting has triggered intense political debate, Sagai, in the state of Karnataka, with the BJP and the JDS of course exploring the reasons why this happened, isn't it?
19: Absolutely. And if you notice that Sadananda Gowda has openly said that he had information stating that they were meeting in a place in Hebbal, in an apartment in Hebbal, where they were discussing about the MLC election. He had also appreciated the Karnataka's Chief Minister D.K. Shivakumar saying that he is well-versed about the election and he has also won very good numbers recently. And he was preparing for this particular MLC election that he had to prove his ability as a Chief Minister of Karnataka. And that is the reason he has fielded the fifth candidate. And he wanted to ensure that the message has been conveyed to the top leaders in Karnataka, that is the state BJP president and the opposition leader R. Ashoka. However, he was unable to get through them, and he said that he was aware about the information that there was some kind of conspiracy to ensure that the fifth candidate of Congress gets win. And we are in a coalition power partnership in the state of Karnataka. If you would have been more precautious, probably Congress wouldn't have won.
1: With that for the moment, Sagar, getting us that quick update on trouble as far as the BJP and JDS is concerned, allegations of cross voting that seems to have embarrassed the BJP and the JDS. A review meeting of sorts is going to be held today in the National Capital. More news coming in from Kerala. Here, a horror caught on camera. A lorry plows into kids at a bus stop. Three killed in the devastating bus stop crash where school students are among those who have been killed. Out of control lorry rammed into waiting commuters, as you can see in these pictures coming in. It was a sand-laden tipper that lost control in Kollam district. 10 to 12 people were waiting at the bus stop is what we know. Sand spilled, trapping victims under the debris. Rescue operation was launched at the crash site. Images are on your screen from the very place where this horrific accident has taken place in Kollam in the state of Kerala. Shivi is getting in the very latest on that story. Three killed in this devastating bus stop accident. What really happened here? Shibi, take us through the details.
17: What we're understanding is that this tipper lorry rammed into a bus stop. In fact, many students and many people were waiting at the bus stop. This took place in the morning. So, it's naturally the school hours. These children were going to school and tuition classes early in the morning. And that's when this incident took place is what we're understanding. This tipper lorry was carrying sand and that sand fell near the bus stop. Many people got trapped under it is what we're learning. And because, when three people have died and when they were taking out these bodies, the health department says that there were some body parts also recovered from there, which means it was a very harsh accident that took place. Three have passed away, one child and two elderly people, and five are injured. Three of them are in serious condition is what the health department is saying. In fact, this also raises concerns regarding the speeding of these vehicles and also the fact that, heavy vehicles like tipper lorries are being allowed during school hours also in a very dangerous manner. So naturally in the coming days, there will be more action, more discussions taking place regarding this because three lives have been lost and many children who were waiting at the bus stop have been injured.
1: In fact, thank you for the moment getting in those details. Certainly, the administration has got some serious answering to do, like Shibi has pointed out. How was that the triple lorry was being allowed to, use the roads at a time, which is a busy time for school children, and the circumstances surrounding this accident that has taken the lives of three people here is what Shibi is telling us. Time for a quick commercial break here. On the other side, after Shinde's Sixer against Uddhav, more Netas possibly would be dumping the Uddhav Sena. That's what it looks like. Four legislators have skipped a huddle call by Uddhav Thackeray.
20: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
21: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
22: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
23: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
24: We will teach you the ropes. There is no peak in journalism that our mentors haven't scaled. So look no further. Join our postgraduate diploma programs and gain guaranteed internship and proven placement record with top media houses and companies. For more information, visit IndiaTodayMediaInstitute.in or call 95600-65465.
25: Can India afford its growing dependence on food imports? The Iran war has exposed India's dependence on imported pulses, fertilizers and edible oils, with the expense set to soar to $56 billion. This week, India Today examines what India needs to do to achieve food self-sufficiency. Read it in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now at subscriptions.intoday.in.

0: Very good afternoon and thank you for tuning in to Lunch Break on India Today. I'm Suesha Sound. We straight away cut across to breaking news coming in this minute. Ram Mandir donation row probe that is underway, where SIT report on Mandir funds has now been submitted to the government. The SIT has submitted the preliminary investigation report to Home Secretary Sanjay Prasad. Vijay Vishwas Pant, Commissioner of the Lucknow Division, along with the other two members who submitted the preliminary report regarding the alleged theft of donations in the Ayodhya case. My colleague Ashish joining us on the broadcast with further details. Ashish, SIT report ke mutabik kya aage aaya hai jankari ye bhi hai ki kai tarike ke procedural lapses jo ki multiple levels pe the, kya bata sakte hain aap?
1: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा खुलासा है क्योंकि राम मंदिर मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और ये रिपोर्ट सीधे एसीएस संजय प्रसाद को दी गई है, यानी गृह को, जिसमें साफ तौर से जो एसआईटी जांच कर रही थी उसने ये शुरुआती जांच में जरूर पाया है कि कई जिम्मेदारी जिन पदाधिकारियों को दी गई थी, फिर चाहे उसमें बड़े पदाधिकारी ट्रस्ट से जुड़े हुए हों या फिर बीच के पदाधिकारी हों, उन सभी की जो जिम्मेदारी दी गई थी उन जिम्मेदारियों को निर्वाह उन्होंने ठीक से नहीं किया और यही वजह थी कि इन लैप्सेस की वजह से ही वहां पर चढ़ावा चोरी जैसी मामले सामने आए। एसआईटी की इस रिपोर्ट में ये भी है कि तकरीबन जितने भी वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे उन सभी की कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई है, यानी कि ये जो कर्मचारी हैं इनके जो वहां कार्य कर रहे थे एसआईटी की रिपोर्ट में वो बिल्कुल पाक साफ नहीं आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें मेन पदाधिकारी हैं, फिर चाहे वो चंपत राय हों या इसके अनिल मिश्रा या गोपाल, इन सभी पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी मंदिर की, जिनको लेकर भी ये एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, जिसमें जिम्मेदारी से अगर जुड़ा मानते हैं तो महासचिव चंपत राय के बारे में भी कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। दूसरा, जिस तरीके से जो मंदिर परिसर के अंदर को गाड़ियों का आवागमन हुआ उसके अलावा जो आभूषण बाहर गए उसके बारे में भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है, यानी कि ये साफ किया है कि इस रिपोर्ट में उन लापरवाह ट्रस्ट के कर्मचारियों की, उन जो सेवादार थे उनकी, और इसके साथ साथ वहाँ अंदर मौजूद चाहे वो सीसीटीवी को करने वाले लोगों, उन सभी की एक रिपोर्ट इनिशियल दी गई है। यानी अभी एसआईटी इसको आगे जारी रखेगी लेकिन इनिशियल रिपोर्ट में ये लापरवाही ज़रूर निकल कर आई है, क्योंकि अब आगे जो जाँच होगी, जो सीएम को 15 दिन में रिपोर्ट दी जानी है, उसमें ये साबित होगा कि इस आखिर इन सभी में जो लापरवाही तो हुई लेकिन दोषी कौन है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही चरण में लापरवाही निकलकर आ गई है तो अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसआईटी 15 दिन का समय जो है वो अब सीधे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा और वो वहां से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये तो साफ हो गया कि इनिशियल स्टेज पर जो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या मिडिल मैन हो, जिस टिन्नू यादव जैसे लोग हो या लवकुश मिश्रा जैसे लोग हो, उन सभी की संलिप्तता पाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल के लेकर और इसके नीचे फिर चाहे जो गेट पास कराते हैं उनको लेकर भी ये खामियां निकल कर आई हैं। सचिव एसीएस गृह यानी कि संजय प्रसाद इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके इसको आगे अभी चीफ मिनिस्टर के पास बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर ये जरूर है कि जो लापरवाह कर्मचारी हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर सीधे गृह को दे दी गई है, शासन को सौंप दी गई है और इस मंदिर जो चढ़ावा चोरी का मामला है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई भी देखी जा सकती है, क्योंकि अभी 15 दिन का समय है जिसमें आरोप सभी पर लगे हैं, फिर चाहे वो महासचिव चंपत राय हो या इसके अलावा वहां पर जो अन्य कर्मचारी मौजूद हों उन सभी को, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो या टिन्नू यादव हो, उन सभी पर इस तरीके की जाँच की अब रडार लटकी हुई है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था पिछले तकरीबन 7 दिनों से, एसआईटी ने अयोध्या में रुककर वहां के मंदिर के एक एक चीज को छानबीन किया है, मंदिर परिसर में उन सेवादारों से बातचीत की है, साथ ही साथ वहां पर मौजूद उन सभी जितने कर्मचारी कार्य करते हैं उनसे बात की है, टेम्परेरी बेस पर जो 15 से 20 हज़ार की नौकरी करते हैं उनसे बातचीत की है, जो दान को काउंट करते हैं उनसे बातचीत की है और उसके आधार पर एक पेन ड्राइव को तैयार किया है, साथ ही साथ सीसीटीवी से जुड़ी हुई जानकारी भी इकट्ठी की है। यानी कि सारी जानकारी एसआईटी ने सौंपी है एसएस गृह को, संजय प्रसाद को, और अब 15 दिन बाद ये जरूर साबित होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर दोषी कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी होगी। जी
0: जी आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग आउट नाउ. मेनी मेनी ऑफ दोज हु वर्क्ड विद इन द सिस्टम आर अंडर द रेडार. As the SIT report that has suggested the procedural lapses that functioned on multiple levels, how the security checks were happening, how the bank SBI that was deployed with the responsibility of the cash counting procedure that had been outsourced to a private agency, to even how those donations were captured under CCTV, but how it exactly exited from the temple. Remember, the footfall in the Ram temple is nearly 10 lakh and more on a daily basis. But now the SIT, having submitted the preliminary investigation report, even as the probe is underway. Moving on to more breaking news, Tamil Nadu government has moved Supreme Court challenging Madras High Court order allowing lamp lighting at the Deepathoon at the Thirupankudran Hill. The TVK government has challenged the order passed by the Madras High Court on the 6th of January, where a two-judge bench had upheld the order allowing the lighting of the lamp. The TVK government has argued that the ceremony could lead to law and order issues and that the Deepathoon ceremony was traditionally done at a different spot. The SLP was filed last week but is yet to be listed for hearing as the registry had raised some defects in the petition. The disputed spot is located about 50 meters away from a darga at the hill. Let me take this to my colleague Anisha Mathur to get further details of how the TVK government has now challenged that order of the Madras High Court and what exactly they've stated as part of their arguments, Anisha.
2: Well, Sarita, the details of the petition are not yet available since the petition is not yet listed for hearing. But what we can tell our viewers is that earlier also an SLP had been moved by the previous government of Tamil Nadu. Even that was not heard in time before the elections. And now with the TVK government taking over once again, Tamil Nadu government has approached the Supreme Court challenging the Madras High Court order that was passed on January 6th, which said that the Kartikeya Deepam ceremony can happen at the Thirupankudran Hill. Now remember, we've seen a lot of politicking and a lot of on-ground protests regarding this particular Deepathoon ceremony. We saw the way we've seen how protests had happened when the ceremony was to be conducted. We saw how police
0: Anisha, continue talking to us. Like you're saying that the SLP was filed last week but is yet to be listed for hearing as the registry has raised some defects in the petition. The disputed spot that is located about 50 meters away from a darga at the hill. With regards to the defects that have been mentioned as part of this petition and when it will be heard, what more are you picking up?
2: Well, at the moment, Sesha, we can't say anything about when it might be heard because the state has 90 days to cure the defect. That is, within 3 months, they have to cure the defect. Whatever problems or concerns that the registry has raised, they have time to correct that. And then the matter can be listed at any point of time once they cure the defect. So we spoke to the lawyer representing the state. He has said that the work is being done and they expect and hope that the matter will be heard soon. But even

0: And we are now getting you details of the Lucknow tragedy where cops are probing power overload in that incident. Approved power load for that building that was 20 kilowatt. However, that building that was running on power load of 34 kilowatt. In April, the building's power load was about 24 kilowatt. Now, according to experts, the load had far exceeded the sanctioned capacity, placed immense strain on the wiring system and the transformer. The risk of a short circuit that was significantly heightened due to the combination of extreme heat and overloading. Questions are now being raised as to why the electricity department had failed to take action despite the load exceeding limits for 3 consecutive months. Neither was the legal process initiated to increase the sanctioned load, nor was a notice that was issued to disconnect the power supply. Let me take this to my colleague Samarth, who's tracking all the developments, especially with regards to this particular angle, Samarth, of how the power load had exceeded the actual capacity of what that building could wither. Questions now on the electricity department. Why did they fail to take action?
1: See, Anisha, as the investigation is happening across all the departments, we are getting to know more and more lapses, be it in the LMC, be it in the LDR, be it in the electricity department. Now, what we have got to know as per the sources, that the overload was also another issue for the short circuit, which led to this particular fire in the month, in the summer month in Lucknow. We saw that the electricity was overloaded in that particular complex, in that particular area, especially the gaming zone, the animation center, and that led to the fire. The question is, for the past 3 months, there were complaints about the overloading of electricity, especially by the nearby residents as well. Why LESA department was sleeping? Why the electricity department did not act upon it? Why they did not come for checking despite seeing the overloading thing? That too in the posh locality of Aliganj in Lucknow. That's the bigger question, because this only led to the short circuit, and later it converted into the heavy fire which left 15 youngsters dead. So it's a big question on the Department of Electricity, like, why did it not act despite seeing this overloading? Since last 90 days, they had much time to investigate or to come along and do the survey at that particular complex, at that particular building. They did not do. If the department would have acted timely, might be this incident could have been averted. So that's a bigger question on these particular departments. It's not just about the electricity department. All other departments, including LDA, LMC, whosoever kept giving that particular building the green chit for so many years, that these are the major culprits behind this particular fire incident in Lucknow. Back to you.
0: All right, Samarth, many thanks for getting us those details. India Today being the first channel to report from inside that building that was gutted in fire. India Today's Santosh Sharma getting us this ground report. Take a look.
2: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था, और यहां से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है, और ये छोटा सा रास्ता है, ये इस रास्ते से यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, देखिए आपको बेसमेंट भी में भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे, मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट। टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया। ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि 3 फ्लोर का बेसमेंट, 3 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, 4 फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था, और ये बॉक्स रूमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनको निकालने के लिए जो लोग फंसे हुए थे पीछे की तरफ, उनको निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इसी से लोग निकलने के लिए और बाहर आने के लिए रास्ता था। और अब ये एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ, और ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके। यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। और उस कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। दूसरी चीज, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये पूरे आग लगी हुई है, आग लगी हुई थी, उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया। तो कहा जाता है पूरा ये अनदेखी, नियमों की अनदेखी, जो कायदे कानून थे, जो एलडीए की लापरवाही, तमाम जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, उसका नतीजा है कि एक बॉक्स नुमा कॉम्प्लेक्स में आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसलिए सवालों के घेरे में क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया बता करके ही इसका नक्शा पास कराया गया एलडीए ने। तो जिस एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर जिम्मेदारी थी ऐसे लीगल कंस्ट्रक्शन की, ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने की, वो क्या कर रहा था जब रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शा पास करा करके कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पर 3 दुकानें, कोचिंग सेंटर, पेट्स की शॉप, उसके बाद एक स्टूडियो चल रहा है, नीचे शॉप्स हैं। तो एलडीए के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं।
0: And while a massive blaze in Lucknow's Aliganj area that has claimed 15 lives, several others were injured, Chief Minister Yogi, who visited the tragedy site and met the injured at the hospital, has vowed strict action against those who are responsible. A total of 4 people have been arrested so far in this case, including the building owner. The incident has exposed serious lapses, including alleged conversion of residential property into commercial use, restricted access due to auto-locked gates and biometric entry, lapses such as inadequate staircase space and the lack of proper emergency exits that have come to light. Uttar Pradesh government has ordered an SIT probe and suspended 4 officials, a detailed report that has been sought within a week. Amid allegations of lapses, deceased Aditya Srivastava's mother has claimed that rescue operations were delayed for nearly 2 hours, with slow evacuation of the injured and failure to prioritize the area where smoke was first seen. She has also alleged that timely action could have saved lives. Fifteen distraught families have been left to pick up the pieces and mourn the loss of their children. India Today spoke to the families of victims who were charred to death, unfortunately, in Lucknow inferno yesterday. Distraught, inconsolable families demanding strict action on the accused.
3: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम? क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख रेख सुविधा असुविधा की बात है।
4: कोई एग्जिट नहीं था, होता तो बच्चे निकल सकते थे आदित्य,
3: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है सब, बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
5: हमारी सिस्टर आई है, वो छोटे वाले बेटे कान दिखाना था यहीं बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो कान दिखाया, फिर उन्होंने सोचा कि लाओ जा करके भैया से भी मिल लें, फिर तब जिस वहाँ जाए, और वहाँ जब गई है तो वहाँ लपटे उठ रहे हैं।
6: मतलब उनकी मदर, उनकी मदर अपने बेटे के ऑफिस पहुंची तो देखा कि ऑफिस के बाहर लपटे,
5: वो सब लपटे वहां, सब वो बुझाने बुझाने को चल रहा, तब तक हम घर पर थे, तो मंजिले वाले बेटे पास फोन है, हाय भैया, तो वो करने लगा, हाय अरे क्या हुआ, हाय वो, तो हमने कहा क्या हुआ क्या, तो कहे कि बुआ क्या आदित्य वहाँ आग लग गई है बिल्डिंग में उनके यहाँ कोचिंग वाले। लापरवाही जब ये पता चला कि लिफ्ट है, कोई भी बिल्डिंग अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था, कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं, और वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए।
7: कैसे मतलब कितनी भयंकर थी, आप लोग उस समय क्या समझ पाए अचानक से कहाँ भागना है क्या करना है? भागने का रास्ता कोई था, एग्जिट विंडो वगैरह कोई नहीं थी? परिस्थिति क्या थी, क्या कोई बचाने के लिए आया, कैसे अंदर कुछ पहुंच पाए?
8: फोन
7: कर रहे थे
8: कि कोई बचा ले हमें, नहीं कोई फोन ही नहीं उठा रहा था।
9: बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली। एनिमेशन का काम करता था सर, लगभग 2.5 से 3 साल से जॉब कर रहा था वहाँ पे।
10: अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
7: तो घर में क्या स्थिति है उनके?
10: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था वहीं, पढ़ाई भी करता था।
7: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना घटना पर?
10: जी हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, एक लौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था।
11: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब, जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
12: मेरे सीनियर ने आके बताया कि जो है ना आग लग गई है, थोड़ा यहाँ से जो है हम लोग यहाँ सिस्टम बंद करो, थोड़ा बाहर निकलना है, कुछ गड़बड़ी है। तो उस समय पता नहीं था कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है। जब बाहर निकले हैं तो देखा कि वो पूरा ऑफिस धुएं से भरा हुआ था, नीचे से ही आग लगा की धुआं से पूरा कॉरिडोर लॉक हो गया था, हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो कितने बच्चे अंदर फंसे थे? कम से कम जो है ना 20 लोग अंदर फंसे हुए थे। तो सोचे 15 या 12 की जो डेड बॉडी आ चुकी है, वो सब स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, स्टडी नहीं कर रहे, सब जो है प्रोफेसर 3D आर्टिस्ट थे।
13: 7 बच्चे चोट के साथ आए थे इंजर्ड, और 15 ब्रॉड डेड थे। जो ब्रॉड डेड थे वो सब पंचनामा करने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और पोस्टमार्टम हो रहा है। दूसरा जो 7 घायल थे उसमें से 2 को मॉडरेट चोटें हैं, 5 को मामूली चोटें थी, उनकी छुट्टी हो गई है। उन 2 में भी एक बच्ची है जिसके थाई में थी लेकिन फ्रैक्चर नहीं है, और एक दूसरा लड़का है जो ऊपर से कूदा था, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा तो एक रॉड पे गिर गया, जिससे कमर के स्पाइनल कॉर्ड में उसकी इंजरी आ गई है, उसके नीचे का हिस्सा भी सुन्न है। वो थोड़ी अभी उसकी स्थिति मतलब वो खतरे से बाहर है, जान को नहीं है, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा अभी काम नहीं कर रहा है, पैराप्लीजिया हुआ है।
14: एक लड़की थी जिसको जो घायल हुई, उसको बहुत विशेष चोट नहीं आई है, बाएं डोर उसमें चोट आई है, और जो एक लड़का है उसमें से उसको रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर गई है, और वो डोर लिम्स उसकी पैरालाइज्ड, पर 15 जो है वो डेड लाए गए हैं, और वो 15 के 15 स्मोक से जले हुए नहीं आए।
0: And while the Lucknow building fire has killed 15 people and injured 9, investigators are probing suspected fire safety and building norm violations. As the probe is underway, 4 people have been arrested, 4 government officials who've been suspended as authorities intensified action over the devastating fire. The 4 arrested accused, including Virendra Prasad Shukla, Ramkrishna Upadhyay and Tushok Krishna Jaiswal, 1 more person, Suresh Kumar Sahu, has also been arrested in this case. Now, according to investigators, the structure was approved as a residential building but was allegedly being used for commercial activities. Authorities are examining whether violations of building and fire safety norms contributed to the disaster. In a parallel administrative action, Chief Minister Yogi Adityanath ordered the suspension of 4 government officials over alleged lapses linked to the incident. Those suspended are Gaurav Kumar, who is the executive engineer, Kamlendra Kumar Singh, who is the fire standards and station officer, Anil Kumar, assistant engineer, and Pramod Pandey, junior engineer. Officials said more disciplinary action could follow depending on the findings of the investigation. The initial probe into the Lucknow tragedy points out that the ill-fated coaching centre did not have proper fire permits. India Today reached another hub of coaching centres right in the heart of Delhi to uncover the reality of illegal commercial buildings. Let's take a look at this shocking report that came in from the national capital.
15: We are currently reporting from Lakshminagar, and after the tragedy that has struck Lucknow yesterday, in which 15 students had to lose their lives because the coaching centers did not have the requisite permissions and they were running these centers illegally. Out here in Lakshminagar, which is one of the biggest coaching hubs of the national capital, the team of India Today has reached over here to carry out a ground reality check. But if I could just move out of the frame and try and show you in the visuals behind me, the situation over here is very, very grim and unsafe, absolutely unsafe for any student who is coming over here for the purposes of taking coaching or for the purposes of using the facilities of a library. You can see in these visuals, big AC vents have been put out here right on the street. Apart from that, open overhead wires, they are hanging in each and every nook and corner. The buildings in which these coaching institutes are being run, there are absolutely no exits that can be seen except for these small exits that have been built over here, which is what approximately two feet in width. If I could show you, this is the entry of this particular coaching center. In this building itself, there are several centers that are running over here. And right at the entry, if at all, there is a spark that starts over here. And the meters, you can see these open wires that are coming out. If at all in any of them there is even a small spark and a fire breaks out, there is no other exit for the students to actually get away from here.
16: Too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20 volt max power tool when you buy a select 20 volt max 5 amp hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20 volt max 8 amp hour battery when you buy a DeWalt 10 inch 20 volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
17: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
18: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
20: Iran war has exposed India's dependence on imported pulses, fertilizers and edible oils, with the expense set to soar to $56 billion. This week, India Today examines what India needs to do to achieve food self-sufficiency. You read it in the latest issue of India Today, Making Sense of India, now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now at subscriptions.intoday.in.

0: परीक्षा की अंदर अपियर हुए, जो परीक्षार्थी बनके बैठे, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक, उनको पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और इस व्यवस्था में लगने वाले सारे अधिकारी और शिक्षक, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। हम सबने मिलकर जिम्मेवारी लिया, सबकी छोटे छोटे दायित्व से बड़ा दायित्व पूरा हो पाया। विद्यार्थियों ने अपना काम किया, अभिभावकों ने अपना काम किया, शिक्षक इन्विजिलेटर आपने काम किया, जिला प्रशासन की तमाम टीम, परीक्षा केंद्रों को निगरानी करने से लेके सुपरिचालना करना, राज्य की सारी तमाम टीम और केंद्र स्तर पे अनेकों विभागों की कोऑर्डिनेशन के कारण ये उपलब्धि हो पाई है, एक सामूहिक दायित्व है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबकी सामूहिक प्रयास से ये काम को हमने कर पाए हैं और निश्चित रूप में ये एक आत्मसंतोष की विषय है। पिछले दिनों में जो चुनौती रहा नीट को लेके, इस बार सारे विषयों को सावधानीता बरतते हुए इसको निभाया गया है, उसको पूरा किया गया है, इसलिए एक सामूहिक उपलब्धि है।
1: सामूहिक उपलब्धि है, लेकिन इस बार क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये इंश्योर क्यों करना पड़ा कि प्रधानमंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए?
0: यानी प्रधानमंत्री जी के सभी विषय में इन्वॉल्वमेंट रहता है, माननीय प्रधानमंत्री देश की सेवा करने को उनको देश ने जनादेश दिया है, उनको आशीर्वाद किया है, इसलिए सबकी दायित्व है। जब देश की प्रमुख सेवक के नाते उनकी भी एक दायित्व है, उन्होंने भी अपना चिंता जताया है, दायित्व निभाया, चिंता ने दायित्व निभाया, इसलिए सबकी भूमिका है। मैंने कहा इसके सारे स्टेक होल्डर्स को मैं आभार प्रकट करता हूं, निश्चित रूप में इस देश की नीति निर्धारक करने वाले व्यवस्था के प्रधानमंत्री जी प्रमुख है, इसलिए उनकी भी एक भूमिका रहती है, वो अपना भूमिका निभाए, वो तो दायित्व है उनका।
1: आगे इस तरीके के पेपर लीक ना आए, इसको लेकर क्या आप कड़े कदम उठा रहे हैं?
0: देखिए, इस प्रकार की जो परीक्षा नीट होती है, इसको राधाकृष्ण कमेटी ने पिछले दिनों में भी कहा था, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, हम एनटीए उसको आयोजन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। स्वास्थ्य विभाग को हमने पिछले एक दो सालों से कह रहे थे इसको हम लोग सीबीटी की ओर ले जाए, राधाकृष्ण कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था, स्वास्थ्य विभाग की एक मत था, लेकिन इस बार वो भी सहमत हो चुके हैं। अगले बार जब हम परीक्षा नीट की करेंगे उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, और एक भी मत आ रहा है कि इसको और कुछ नए तरीके से किया जा सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, किस भी एक प्रकार के मत आ रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को, देश के अभिभावकों को, देश की शिक्षा जगत से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले साल निश्चित रूप में निर्भुल करेंगे, संभवतः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर जाएंगे, विद्यार्थी अभी से उसकी तैयारी करें। देश के अंदर लगभग सभी परीक्षा धीरे धीरे सीबीटी की ओर हो चुका है, और सीबीटी होने से थोड़ा तुलनात्मक और अच्छा होता है, उसमें भी अनेक प्रकार की चुनौती रहता है, उसको भी संभालने की सारे प्लानिंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में परीक्षा जेई हो, नीट हो या नेट यूजीसी हो, ये सारे परीक्षा को निर्भुल करने का हमारी दायित्व और हम आर कमिटेड फॉर दैट।
1: लेकिन राहुल गांधी है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए नीट का मामला है, वो कह रहे हैं सीबीएसई का है, वो कह रहे हैं यूजीसी का मामला है, ये सारे विवादों को लेकर वो लगातार हमले बोल रहे हैं, वो कोटा जा रहे हैं, वो प्रयागराज जाएंगे, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर छात्र तैयारी करते हैं।
0: देखिये,
1: राहुल उठा रहे हैं आपके मंत्रालय के ऊपर,
0: राहुल गांधी जी को सवाल उठाने का उनके एज ए नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरा भूमिका है, लेकिन उनको मेरा सुझाव रहेगा, वो कितना समझ पाते हैं विषय को, भारत की आत्मा को कितना जानते हैं, भारत के नौजवानों की धड़कन को कितना समझ पाते हैं, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जो आचरण ऐसे नहीं दिखता है, वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करवाए। नीट परीक्षा होगा उसके कुछ दिन पहले जाके नीट में जहां ज्यादा बच्चे बैठेंगे उस प्रकार की शहरों में जाके दहशत खड़ा करना, इस सारे सीमा को तोड़े, सारे हद को उन्होंने तोड़ा। जब नागपुर में जो घटना हुई, नागपुर के एक बच्चा ने अपनी चॉइस से, अपने पिताजी की आईपी एड्रेस से, उन्होंने जब उनको अवसर मिला दोबारा परीक्षा केंद्र कहां हो, इस प्रकार की जब एनटीए ने अपना प्रश्न पूछा, उन्होंने अपनी चॉइस से उसको अबुधाबी लिखा था, ये प्रमाणित हो चुका है। उसके पिताजी भी स्वीकार करें, हाँ हमने तो एनटीए ने तो कुछ ऐसे नहीं किया, एनटीए शायद होगा कोई और, कोई क्या होगा,
1: लास्ट टाइम फिर सेंटर चेंज किया,
0: लास्ट टाइम उन्होंने नहीं कहा था एनटीए को, एनटीए के कान पे कहीं से खबर है कि इस प्रकार की एक

0: स्कूल में बच्चा है जो शायद कह रहा है कि मेरे परीक्षा केंद्र तो अबुधाबी हो गया। एनटीए ने अपने से उस अभिभावक को संपर्क किया, बच्चे को संपर्क किया, क्या आप देना चाहते हो नागपुर में। उन्होंने खुद लिखा है, तीन बार लिखा है लॉगिन करके कि मैं अबुधाबी में देना चाहता हूं। उसको फिर एंड मोमेंट में लास्ट समय में हमने उनको अवसर दिया नागपुर में परीक्षा देने का। लेकिन उसके पिताजी फिर भी आए, किसी मजबूरी होगा उनका फिर आए कहने के लिए, नहीं तो हमारा अबुधाबी कैसे हो गया। हमने उनको प्रमाण दिया, आपने खुद ही कहा है, ये जानते हुए भी राहुल गांधी कूद पड़े उसमें से। ये लंबा ट्वीट किए हैं उन्होंने, पोस्ट एक्स में पोस्ट किया है। मेरा अपेक्षा है राहुल गांधी जी, उसमें अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा है, थोड़ा भी जवाबदेही बचा, वो देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। ये सारे हद पार हो गया जब उन्हीं की पार्टी की एक पॉलिटिकल रैली के कारण कर्नाटक में व्यवधान खड़ा हुआ और उसकी और शर्मनाक बात है, उनकी नेताओं ने बेहुदी तर्क दिया कि बच्चे पहले क्यों नहीं गए। आपको बुद्धि नहीं है कि आपको थोड़ा जाके अलग रैली करना, रैली करने को मजबूरी था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस रैली में उपस्थित थे, आपके राज्य
1: लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर, नीट को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं।
0: देखो, राहुल गांधी दहशत खड़ा करना चाहते हैं, उनको देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं है। नौजवान अगर उनकी बात में रत्ती भर जाते हैं तो इतने संख्या में लोग व्यवस्थित नीट परीक्षा में अपीयर ना करते। वो तो चाहते हैं, वो ताक देके बैठे थे कि भाई इंतजार करके बैठे थे कब नीट में फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए कि फिर मैं राजनीति करना शुरू कर दूं। ये उनकी बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और गैर जिम्मेवार व्यवहार है। वो एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में चलने वाले व्यक्तित्व है।
1: कुछ संगठन है वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नीट, सीबीएसई, इस तरीके के जो मुद्दे हैं आपके मंत्रालय के, उनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: देखिये, मैंने कहा ना, देखो प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां? वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जताए, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय करना पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक बहक बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है।
1: एक सवाल और है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब भी पेपर लीक होता है उस आम आदमी प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं, ये इंश्योर आप कर देंगे कि अब आगे से भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि पेपर लीक के कानून में जो प्रोविजन है सजा का, आपको लगता है कि उतना काफी नहीं है?
0: देखो, हिमांशु जी, 302 धारा अभी भी है, उसके बाद भी घटनाएं होती है, ये एक सामाजिक प्रश्न है। मैं पिछले 5 साल से शिक्षा विभाग के काम में हूं, अनेक चीज शिक्षा विभाग में जब घटना सुनते हैं, कोई कोई कैंपस में कोई बच्चा का जान चली जाती है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए, उसकी पीड़ा होती है, इसकी जिम्मेवारी भी हम लेते हैं, लेकिन एक सामाजिक विषय है, परिवारों की दायित्व है, विद्यार्थी की अपना एक मानसिक स्थिति कैसे ठीक रहे, शिक्षकों की दायित्व है, इंस्टीट्यूशन की दायित्व है, व्यवस्था चलाने वाले हम जैसे लोगों की भी दायित्व है और आप जैसे जिम्मेवार लोगों की भी दायित्व है,
1: अवेयरनेस करना चाहिए,
0: उसको संभालना पड़ेगा, अवेयरनेस से बियॉन्ड है, इसको मेंटरिंग करना पड़ेगा, इसको एक राइट कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। एक दो घंटे एक आधा इंसिडेंट की विषय नहीं है, इसको एक नया कल्चर लाना पड़ेगा, एक पैराडाइम शिफ्ट की ओर ले जाना पड़ेगा, जो एनईपी ने आखिर मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा क्यों कहा गया है। बच्चे को शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा में नेतृत्व खुद क्यों करते, कई लोग उनको परिहास करते हैं, कई लोग उस व्यवस्था में उंगली उठाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर एक साल आके बच्चों की मनोबल बढ़ाते हैं। ये दायित्व है, व्यवस्था में रहने वाले लोगों की दायित्व है, समस्या को मुंह नहीं मोड़ देना है, उसके अंदर जाके उसको समाधान करना, उसको संभालना है। हम संभालने वाले लोग हैं, हम चीजों को एकदम ये नहीं कह सकते आगे नहीं होगा, हम संभालेंगे चीजों को, समाज को साथ लेकर संभालेंगे, विद्यार्थी को पहले लेंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक करेंगे व्यवस्था को, पेरेंट्स को समझाएंगे, टीचर्स को समझाएंगे, जो दहशतगर्द है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिससे वो आने माफिया उसमें सक्रिय ना हो पाए। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में चलना पड़ेगा।
1: एक अंतिम सवाल है, एक बड़े व्यंगकार शरद जोशी, उन्होंने एक बार एक व्यंग लिखा, उन्होंने कहा कि हर मंत्रालय में एक ज्योतिष होना चाहिए, वो देखे कि कौन सी योजना कब शुरू करनी है नहीं करनी है। क्योंकि पिछले अगर कुछ एक साल में मैं देखूं तो आपके मंत्रालय में बहुत सी कंट्रोवर्सी हो गई। पहले जो है तीन भाषा का आया, फिर यूजीसी आ गया, फिर नीट आया, फिर जो है सीबीएसई का आया। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था?
0: नहीं नहीं, देखो
1: ये पार्ट क्योंकि वो व्यंग है,
0: देखो व्यंग को व्यंग रहने दो, हमारी दुदाई तो है चीजों को व्यवस्थित करना, हम उस काम पे कटिबद्ध है और बहुत जिम्मेवारी के साथ स्पष्ट हम है कि इसको व्यवस्था को संभालना हमारा दायित्व, हम संभालेंगे
1: जी।
2: And with that, it is time for us to slip into a very sharp commercial break. We'll continue to play excerpts of this exclusive interview through the day. Do stay tuned to India Today.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: Can India afford its growing dependence on food imports? The Iran war has exposed India's dependence on imported pulses, fertilizers and edible oils, with the expense set to soar to $56 billion. This week, India Today examines what India needs to do to achieve food self-sufficiency. You read it in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now at subscriptions.intoday.in.

0: आज जो घटना हुई है वो अत्यंत अफसोसजनक है, हृदय विदारक घटना है और इसकी इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी की सरकार है जिन्होंने जब कभी भी जो घोषणा की या इस प्रकार की कार्रवाई की बात की तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, नसीहत देने वाली कार्रवाई की और ऐसे लोगों को खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उनके खानदान तक के लोग याद रखेंगे।
1: लखनऊ के अली नगर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 15 बच्चों की मृत्यु हुई है और 7 बच्चे घायल हुए। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।

0: a routine goodbye, one that became the last.
1: जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है, सब बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे, इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
0: एंड देन देयर इज ज्योति, अनदर लाइफ कट शॉर्ट बाय द फायर. आउटसाइड द बिल्डिंग स्टैंड्स हर ब्रदर सत्यम, बिसाइड हिम द स्कूटर ज्योति रोड टू वर्क एवरी डे. टुडे इट इज मेकिंग वन फाइनल जर्नी.
2: क्या एक्शन होना चाहिए?
3: एक्शन
2: लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और हम प्रशासन से जाकर पूछेंगे कड़े सवाल कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है.
3: नॉर्म्स यहाँ फॉलो नहीं हुए थे, वो ऐसा चलता रहेगा. मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए. लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है.
0: 15 लाइव्स लॉस्ट, डजंस ऑफ ड्रीम्स रिड्यूस्ड टू एशेस एंड फैमिलीज लेफ्ट कैरिंग अ ग्रीफ दैट नो इन्वेस्टिगेशन, no compensation can ever erase. With Samarth Srivastav, Bureau Report, India Today.
4: All right, we'll continue to get you more on that story. Be rest assured, India Today not losing track of the investigations until the time accountability is fixed in this case, as in many others. We're shifting focus right now. We're going straight across to the Padma Awards right now being conferred by President of India, President Draupadi Murmu. Take a listen.
5: Nyayamurti Seva Nivritt K.T. Thomas Lok Karya.

श्री टी जगन्नाथन मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, उनके पुत्र श्री मुकुंद थट्टे।

0: Tejas Surya has met Bengaluru Development Minister Krishnamurugappa yesterday, and again he has targeted the infrastructure of Bengaluru.
1: Yeah, you should also understand the BJP, all the three MPs from BJP from those days represented by BJP. What have they bought from Government of India to Bangalore City's development? Their contribution is zero. They don't even talk about Bangalore development at all. You take the metro, more than 87% of the money is given by the Karnataka government. The land is given by the Karnataka government. So many of the infrastructure created by Karnataka government. IT capital is made by Congress government when we are in power. But what is the BJP's contribution to the development of Bangalore? Just because they are in the opposition party, behaving and opposing everything what we do is not right way. At the time of elections, you oppose me, I oppose, the ideologies will oppose. But development of Bangalore, development of Karnataka should be agenda. That's what Congress means about it. Cheddeshwar Surya is being an youngster with an educated, being an advocate by himself. You should advocate the matters properly, not this way misleading the people of Bangalore.
2: Meri hardik ichcha thi yaar ki main Aligarh mein rahun. Lekin mujhe dukh ke saath kehna pad raha hai ki अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।

0: पीपल ट्रस्ट ने तो शुरू में कहा कि कुछ गड़बड़ है ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का प्रोपोगंडा है, ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगंडा है। क्या ट्रस्ट की नाक के नीचे ये हो रहा था? ये राम के नाम की लूट तो हमने सुनी थी, ये तो राम के नाम पर लूट का मामला सामने आ रहा है।
1: देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी ने ये आवाज उठाई कि जो दान पात्र है उस दान पात्र में गड़बड़ी है, चोरी हो रही है दान पात्र के पैसों में। तो उसके जो वहां पे ट्रस्टी थे, जो उसके अंदर के लोगों ने एसआईटी की मांग की। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, एसआईटी की मांग की। तो जब आपने एसआईटी
0: की
1: मांग की,
0: कोशिश की, बोला ऐसा कुछ है नहीं,
1: वही उसी पे आ रहा हूं। तो इन्होंने एसआईटी की मांग की, पहले तो उसको नकार रहे थे, फिर आपने फिर हम लोगों ने आवाज उठाई तो फिर उन्होंने एसआईटी की मांग की। तो फिर केस बेसिस पे की कुछ तो गड़बड़ था, तो पहले एफआईआर कराते जो है वहां के ट्रस्टी को, जो उनका मैनेजमेंट कमेटी था उसको, जिसपे शक था उस पर एफआईआर कराते और एसआईटी आती उस पर पूरी जान। एफआईआर तो उन्होंने कराई नहीं, एसआईटी बुलाई। तो एसआईटी किस बेस पे बुलाई भाई? आपको कोई, उनको भी तो शंका हुई ना, तो उस शंका के लिए उन्होंने क्या किया, एसआईटी को बुलाया। लेकिन एसआईटी अच्छा होता है, एफआईआर करा के एसआईटी को बुलाते तो कम से कम उन लोगों पे पूरी तरह से इंक्वायरी होती। अब तो धीरे धीरे पता चलने लगा है कि वहां काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही थी, ड्रेस कोड नहीं था, वहां पे कैमरे छुपाए गए, कैमरे के सामने लोग खड़े हो जाते थे, कई बार कैमरे बंद 8-8 महीने तक कैमरे खराब कर दिए गए। ये तो लगातार वहां के महिपाल ने भी बोला है, वहां पे जो लोग और भी रहे उन्होंने आरोप लगाया। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भाई वो तो बड़े लोग हैं, हम सच वहां बोल नहीं पाएंगे। कमल नया दास जी ने वहां पे, जो महंत कमल नया दास जी है, उन्होंने ही बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो सवाल उठता है, और वहां पे जो वहां पे रजनी सिंह ने तो चिट्ठी लिखी थी, बीजेपी के
0: नहीं,
1: नेता है।
0: आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि पहला कदम एफआईआर दर्ज होना चाहिए। श्रीराज नायर जी, फर्स्ट स्टेप इन एनी लीगल इन्वेस्टिगेशन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। व्हाई हैज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नॉट बीन डन? एसआईटी हैज बीन फॉर्म्ड, बट लीगली ऑन व्हाट बेसिस, सर? वेयर इज द एफआईआर?
2: See, it can be the reverse also. Let the SIT find the person who is guilty in this matter. Who under kiske naam pe FIR karte? We cannot fire. The trust cannot appeal to fire an FIR on unknown people.
1: Agyat ke naam pe ho sakte.
2: So, but let it see. Agar if the SIT will come out in open with the reports and let the guilty be exposed. And then FIR can be filed. Why are these people who never went to Ram Mandir and who killed poor car savers and the Congress party which roped in the best of the lawyers so that the Ram Mandir does not come in existence? Why are these Ram Drohis worried who have not even paid 1 rupee donation? So we are definitely not siding by the wrong people. Anybody who or he or she may be will not be spared. That's what पूजने योगी जी हैज सेड,
1: प्रभु तो समाजवादियों के साथ है।
0: बिफोर आई ब्रिंग इन विनीत जिंदल एंड मिस्टर मदान, ओके, अनुराग भदौरिया वांट्स टू रिस्पोंड। अनुराग, हां बोलिए अनुराग भदौरिया जी।
1: अब तो पूरा देश, पूरी दुनिया और प्रभु को भी इस बात का एहसास हो गया, प्रभु भी मान गए होंगे कि कौन हमारा सच्चा भक्त है, वो भक्त जो मेरे नाम पे राजनीति करते हैं, या वो भक्त जो हमारे यहाँ चोरी हो रही है उसको पकड़ने की बात करते हैं, या वो भक्त जो प्रभु के सम्मान की बात करते हैं, उनके आदर्श आचरण पे चलने की बात करते हैं, वो जो वहां जमीन पे गड़बड़ी हुई थी, जमीन घोटाले में भी इन्होंने समाजवादियों ने और विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई थी, इसलिए प्रभु को इस बात का एहसास हो गया, इसलिए प्रभु जान गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था 2024 में समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीती थी। तो इसलिए लोग, आप प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है, आपकी पोल खुल चुकी है, आप प्रभु के नाम पे राजनीति कर सकते हो, लेकिन प्रभु के यहाँ पे गड़बड़ी होती है उसकी आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाला। आप चिल्लाते रहिए, आप प्रभु आपको आशीर्वाद
0: लीगल पोजिशन ऑन दिस, एंड वी हैव टू लॉयर्स ऑन आर स्पेशल शो। अनुराग भदौरिया स्टे विद मी, श्रीराज नायर स्टे विद मी। यू नो, एडवोकेट विनीत जिंदल, इज इन द फर्स्ट स्टेप वेन देर आर एनी अलेज्ड लैप्सेस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR? अनुराग भदौरिया रेजेज अ वेरी वैलिड पॉइंट, रजिस्टर एन FIR. Register an FIR against unknown and begin investigation. The BJP cannot hit back or turn around and say, we will not listen to the killers of Ram Bhakt. Sir, the killers of Ram Bhakt, Samajwadi Party has been punished for it. They are in the opposition. You are in power. Action has to be taken by the government in power by registering an FIR first. Isn't it, sir?
3: Gaurav ji, this is very

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: French perfumes by Chobe. A fragrance that lasts longer than 10 hours. So I can be myself a little more. French perfumes by Chobe. For him and her.

0: But the story that's breaking this evening, the political heat is now building up on Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav after the Indian Express report this morning cited a windfall rise in assets owned by Mohan Yadav and his family members. According to the report, the family bought 253 acres after he became the Chief Minister. Madhya Pradesh Chief Minister is denying any land fraud in Ujjain. The MP CMO sources are claimed no land bought by Yadav after becoming Chief Minister. No land was bought by his wife as well, and a full clarification will be released soon. But the news report has triggered a political storm because the fact is that in a number of cases, Mr. Yadav and his family benefited from a change in land user that has taken place in several of those properties, with roads also being moved through the very areas where the property had been bought by Mr. Yadav and his family members. According to the report, there is clear cases of a lack of propriety and a conflict of interest that led to windfall profits for Mr. Yadav and his family members, all of whom had various property companies. The opposition now is baying for his blood, demanding Mohan Yadav's resignation, claiming this is a major land scam that has taken place.
1: पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार चरम पे है इनका, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, छत्तीसगढ़, हर जगह ये जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं ये पूरी तरीके से लोग लूटम लूट कर रखें। यही कारण है कि आज अलीगंज जैसी घटनाएं घट रही हैं, यही कारण है कि आज जो आपने कहा मध्य प्रदेश में जो, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही शामिल है तो नीचे के लोगों को कैसे कहेगा कि ईमानदारी से काम करो, जो मुखिया बैठा है वही वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये भाजपा के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
2: मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां जहां हाईवे हो रहा है वहां पे पहले से जानकारी है कि यहां पे हाईवे होना है, यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ना है, वहां से जमीन ले ले। जैसे मुझे पता है कि आज यहां पे बाईपास होना है तो दाम तो बढ़ेगा ही, तो पहले में तीन एकड़ खरीद लिया। तो जब वो ऐसा कर रहे तो अभी उनके सबको उनके फैमिली में इनके इन्वॉल्व है, इनके कजन, इनके सब कुछ। तो जब आज आप देखिए बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना जो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी हटाना पड़ा। तो हम तो कहते हैं जब बीजेपी करता है तब ये तपस्या है और जब मामूली लोग करते तब ये स्कैम हो जाता है।
3: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे? क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि तीन मुख्यमंत्री कैसे बदलें, वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीद कर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है, ये गलत है या सही है, प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है।
0: Okay, so there you have the opposition turning on the heat on the Madhya Pradesh Chief Minister, accusing him of a major land scam, insider trading, collusion, making windfall profits by getting the land user changed and knowing in advance exactly where roads and highway projects would come up and buying the land beforehand. Ravish Pal Singh now join me. Ravish, opposition keh raha hai ki Mohan Yadav ko istifa dena chahiye kyunki Mohan Yadav aur uske parivar ne बहुत बड़े प्रॉफिट किए हैं इस तरह के जमीन खरीदी में। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी ने तो सुबह से चुप्पी साधी है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय पब्लिकली क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री खुद आगे आकर अपनी डिफेंस क्यों नहीं कर रहे हैं?
5: बिल्कुल, और यही कोशिश लगातार हमारी है सुबह से। न्यूज रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे
0: म्यूट पे हैं। जी
5: और कई सारे एलिगेशन जो है कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद आज लगाए गए थे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही उनकी सरकार के किसी मंत्री की तरफ से अब तक किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में आया है। इंडिया टुडे लगातार उनका वर्जन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शाम को सीएम ऑफिस से जुड़े हुए खाइली सोर्सेस की तरफ से इतना जरूर बताया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव ने, यानी दिसंबर 2023 के बाद से, उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है और ना ही उनकी पत्नी सीमा यादव ने कोई जमीन खरीदी है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि परिवार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जिनके आरोप लग रहे न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन कंपनियों ने जमीन खरीदी है, तो फिर परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां अगर जमीन खरीद रही है तो क्या उसमें परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? इसका कोई जवाब फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से या भाजपा की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। और आपको ये बता दें कि जो एलिगेशन सब मुख्यमंत्री के ऊपर लग रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने आए हैं और उनका बचाव कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और उससे पहले वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, और एलिगेशन से ही लग रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत पुराने समय से रियल इस्टेट बिजनेस में रहे हैं और उनका पूरा परिवार रियल इस्टेट बिजनेस में रहा है, और खासतौर से दिसंबर 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से तकरीबन 137 प्लॉट्स जो कि है वहां पे खरीदे गए हैं। हालांकि अब ये देखना है कि अगर किसी भी तरीके का कोई खंडन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तो उस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद लगाए गए हैं उसका जवाब किस तरीके से मोहन यादव या फिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि मोहन यादव अब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरी मशीनरी कहीं ना कहीं अब ये देखने में चुकी है कि जो एलिगेशन उसके ऊपर लगे हैं आखिर उसकी सच्चाई क्या है, ताकि उसके बाद वो एक डिटेल्ड वर्जन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी कर सके।
0: But the fact is, Ravish explaining there that clearly after he became chief minister also, 137 plots over 160 acres were acquired by companies linked to Mohan Yadav's family. And the fact is, these were the very land which then saw enormous rise in profitability because that's where various infrastructure projects were created. Did the chief minister therefore know in advance exactly where to purchase the land and pass that information on to his family members? This is clearly a story that won't go away. So far as Ravi says, the chief minister unwilling to comment publicly, no official statement, BJP entirely silent, but clearly this is a huge embarrassment for the BJP in Madhya Pradesh. And the question that the Congress and others are raising, where are the enforcement directorate and where are the agencies when it comes to alleged scams in BJP ruled states? Will anyone from the investigative agencies investigate Mohan Yadav's assets? And this, remember, is also seen as a familiar type of land dealing that's done across the country, where land is acquired in agriculture land and then changed so that windfall profits can be made. Mohan Yadav is clearly under the scanner and we are still waiting for an official statement from him. While CM's office denies media reports, those are only unofficial statements so far. Official statement has still not come from Mr. Mohan Yadav on the allegations made in that Indian Express report. We'll keep tracking that story and not let it pass. You can be assured of that, at least here on the news today. Let me turn from there to our special focus today. What began as a fire emergency has quickly turned into one of Lucknow's deadliest tragedies in recent years. Over 15 people dead. Investigators are uncovering shocking safety violations, from a biometric locked door to a single escape route. The big question is, who is responsible for the 15 lives, many of them youngsters, that have been lost. Santosh Sharma with our top story.
6: A tragedy that has shaken the entire nation. The glaring safety lapses make the Lucknow tragedy even more painful. These lapses turned a building into a death trap that engulfed 15 innocent lives. On Monday afternoon, a massive fire broke out in a three-story building in Lucknow's Aliganj area. Just one way in and one way out, the three-story box-like building became a furnace for students who succumbed to suffocation and flames.
7: सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से और कोई रास्ता था ही नहीं.
6: The floor that had housed the animation institute had an automatic door, operated with a biometric lock. The door got shut during the fire, trapping those inside. The building had a single narrow staircase linking the upper floors to the ground floor and basement, further limiting movement as smoke filled the premises.
7: ये उस basement की तस्वीरें हैं, उस complex के basement की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये आग लगी. मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट, तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स नुमा था. एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं. इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है.
6: द लोन एक्सेस रूट वॉज लाइंड विद एयर कंडीशनिंग पैनल्स, टैंगल्ड वायर्स एंड अदर इक्विपमेंट fixed along a narrow passage, leaving those inside with little room to escape once the fire spread.
7: ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके. यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है. तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया.
6: The tragedy has also prompted questions over how a commercial box-like building was operating in a residential area with no fire NOC in place.
7: जब residential इलाके में residential नक्शा पास करा करके complex बन गया, shopping complex बन गया, वहाँ पर तीन दुकानें, coaching center, pets की shop, उसके बाद एक studio चल रहा है, नीचे shops हैं, तो LDA के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं.
6: Multiple building owners have been arrested, officials have been suspended. Chief Minister Yogi Adityanath has ordered an SIT probe, but can the government ensure that man-made disasters are not repeated? With Santosh Sharma, Bureau Report, India Today.
0: Horrifying visuals and clear signs of major lapses. The big question, of course, who will be held accountable for the loss of those 15 lives? Why are fire safety lapses noticed only after the tragedy? Not just owners, will netas and their bureaucrats be also made to pay? Why should students in particular pay a deadly price for this civic apathy? Why are smart cities, urban debt?

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out. Powered by General Air Conditioners, the extreme machine. Suzlon, good energies that work.
1: Good evening. You're watching News Track with me, Maria Shakil. The special investigation team probing the alleged donation theft at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its preliminary report to the Uttar Pradesh government. The SIT has flagged serious concerns over how donations were counted, monitored, and safeguarded. And that has turned this into more than just a case of missing cash or jewelry. It is a question of trust. Every rupee dropped into a donation box is an offering made in Aastha by devotees who believe it will reach Lord Ram. But it's not reaching him. Now, as legal scrutiny intensifies and a political battle erupts, a larger question is being asked. If questions are being raised over the handling of donations at one of India's holiest places, who will answer for the faith of the devotees who made those offerings? Before I bring in my special guest, Faizabad, the Member of Parliament, Avadesh Prasad, will be joining me shortly. Here's a report.
2: Questions over donations made by devotees at the Ayodhya Ram Mandir are now at the centre of a major legal and political storm. The special investigation team probing the alleged donation theft has submitted its preliminary report to the Uttar Pradesh government, raising concerns over the system used to count, monitor, and safeguard temple offerings. Investigators have also examined how personnel responsible for counting the donations were selected. As per the report, gross negligence was also found during security checks and frisking of employees during arrival and departure from duty. Employees handling cash were allegedly not screened properly. As per SIT, the dress code for employees counting cash was also not enforced strictly. Employees were even seen standing in front of cameras to hide the theft. SIT probe also observed negligence in transportation of donation boxes from the temple premises to the final deposit of cash in the bank. Sources indicate that no individual has been given a clean chit in the investigation so far. A member of the SIT has confirmed in an exclusive conversation with India Today that further action will be determined after the report is examined at the government level.
3: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकेंड पार्ट में जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा उसमें सबमिट करेंगे.
2: Meanwhile, a PIL filed in the Apex Court has sought a CBI-led SIT probe into the handling of the donations. The plea demands registration of an FIR, a time-bound investigation into alleged financial irregularities, and a probe into possible embezzlement or corruption. The petition argues that transparency is essential as the donations are linked to the faith of crores of devotees. The controversy has sparked a political slugfest. Opposition leaders have targeted the BJP government, questioning who is being projected and alleging that Lord Ram's name is being used for political gains.
4: Ram ke naam par vyapar karne wale log hain. Iska natija 24 ke chunav mein inko mil gaya. Inko mil gaya. Uttar Pradesh mein haare hain. Lok Sabha ke chunav mein haare hain. और अब 6 महीना रह गया है चुनाव का तो ये भी जान रहे हैं अब इनकी करारी हार होगी इसलिए डिस्टर्ब चल रहे बाबा
5: मोगले चंद्र को देखो.
2: योगी आदित्यनाथ has urged political parties and devotees not to draw conclusions before the investigation is completed, saying the probe will reveal the truth.
6: अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
2: एसआईटी's preliminary findings have shifted the focus from alleged theft to the systems meant to prevent it. As the government examines the report, the focus is on accountability in the handling of donations at one of the country's most revered temples. Bureau Report, India Today.
1: And joining me now is Avadesh Prasad, Member of Parliament of the Samajwadi Party of Faizabad. Avadesh ji, hamare saath Ayodhya se jud gaye hain. Avadesh ji, एसआईटी ने प्रेलिमिनरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, दान राशि की गिनती पर गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि सबसे पहले इस पूरी गड़बड़ी का आरोप आपकी पार्टी ने लगाया था। आप इस जांच को किस तरह से देखते हैं?
4: देखिए, ये जग जाहिर है कि इस मामले को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है। ये कोई पार्टी का मामला नहीं था, बल्कि ये देश के करोड़ों करोड़ों प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोगों से जुड़ा सवाल था, जो प्रतिदिन बहुत दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में आते थे और प्रभु के दरबार में माथा टेकते थे और अपने सिद्धानुसार चढ़ावा चढ़ाते थे
1: जी।
4: इस चढ़ावे में देश के राष्ट्रपति से लेकर एक ठेला वाला खुंचा वाला भी चढ़ावा चढ़ाया। मैं तो अक्सर जाता ही रहता हूँ, महीने में दो बार। हम तो पैदे हुए हैं, हम तो अपने भाग्यशाली मानते हैं। हमने भी चढ़ावा अपना सिद्धांत चढ़ावा का इतना नहीं कितना दिया। चढ़ावा का सामने वो आस्था से जुड़ा होता है, आस्था तो लगाव है। तो इसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के करोड़ों करोड़ों आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम से उनके आस्था से जुड़ा था, ये उनके आस्था की चोरी नहीं डकैती हुई। लेकिन अफसोस है कि आज 15 दिन से ज्यादा हो गया और एसआईटी का गठन भी हुआ, सरकार ने गठन कराया। एसआईटी ने सुनते हैं अपना कुछ रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रसिद्ध किया, लेकिन ना तो कहीं पर एफआईआर हुई है ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो कानून का राज में, हमने तो कानून पढ़ा भी, हम तो वकील भी रहे हैं। अगर किसी के ऊपर इस तरह से है, एलिगेशन है और सबूत है और रिकवरी तक है, तो मैं समझता हूँ उसमें कानून के में तो कहीं ऐसी छूट है नहीं कि उसके ऊपर एफआईआर न की जाए, उसको गिरफ्तारी न की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है
1: जी। लेकिन अवधेश जी, इसमें जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है और आगे की कार्रवाई अब तय की जाएगी। आपको लगता है इस अभी इमीडिएटली एफआईआर हो जाना चाहिए क्या? इसमें एफआईआर फौरन होना चाहिए?
4: निश्चित तौर से, ये हमें नहीं लगता, ये देश के करोड़ों करोड़ों केवल आस्था रखने वाले नहीं बल्कि देश के तमाम करोड़ों करोड़ों लोगों की जिज्ञासा है। उनकी जिज्ञासा है, उनको आश्चर्य भी है कि सब कुछ हो गया, चीजें बरामद भी हुई हैं, खुलासा भी हुआ है, रिकवरी भी हुई है, इंस्पाइट ऑफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जिज्ञासा देश की है, ये जिज्ञासा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर रहने वाले अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों की जिज्ञासा है, अयोध्या की जिज्ञासा है कि आज तक इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई
1: जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ जो जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया गया है, उनके कार्यशैली या ऑपरेशंस में सवाल उठाए गए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्या आपको लगता है जो पूरा मंदिर परिसर का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दान गिनने की प्रक्रिया है उसको बदलने की जरूरत है, ये क्लीन अप कैसे होगा?
4: ये तो है, ये तो सारी बातें ही हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण में भी उसमें भी बताया गया कि कमीशन खोरी हुई है, चीजों खरीदे बुरीदे में हुई है, जमीन में खरीदने में हुआ है, तो कहीं कोई बचा नहीं है, चाहे वो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो, चाहे चढ़ावे की हो, चढ़ावे में चाहे सोना हो, हीरा जवाहरात हो, चाहे पैसा हो, चाहे चांदी हो, जो भी हो, चाहे हार हो, ये तमाम चीजों पर है, और ये किसी बाहरी लोग तो उसमें जिम्मेदार है नहीं, जिम्मेदार तो जो सरकार की तरफ से वो गठन किया गया है वो वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं, उन्हीं के सामने चढ़ावा होता है, उन्हीं के सामने चढ़ावा गिनती होती है, उन्हीं गिनती करके बैंक में जाता है, तो इसमें तो विलंब हो रहा है।
1: मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि एक नंबर अगर आप बोलेंगे कि कितने की गड़बड़ी हुई है, क्या आपका अनुमान है, क्योंकि आप फैजाबाद के एमपी हैं, वहां के लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, तो कितने का अगर कोई अमाउंट आप बोलेंगे कितना पैसा लूटा गया है, कितने की चोरी हुई है?
4: ऐसा है, कितने की चोरी हुई है इसके बारे में तो ना हम कभी वहां काउंटर पर रहे, गिनती में रहे, ना नजदीक में रहे, तो ये बात तो एसआईटी टीम जो है गठित थी, जो जिसमें ये टीम की जिम्मेदारी होती है कि अब तक प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट देने वाले हैं उसमें कम से कम तो बता देते, तो ये तो हम तो ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम के लोगों का, अयोध्या के लोगों का, कितने लोगों घर गिराया जा रहा है, कितने लोग जमीन मुआवजा नहीं दिया गया है, कितने लोगों 1400 परिक्रमा पे जमीन जबरिया ली जा रही है, कितने लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ये सब कामों में लगे हैं, महंगाई है, लोगों को शादियां नहीं हो रही थी तो वो गैस का प्रॉब्लम था, हम तो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करने में लगे हैं, और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, मर्यादा की रक्षा हो सके हम तो उसपे लगे हुए हैं, दान में कितना चढ़ावा हुआ क्या हुआ इस पे कभी हमारी नजर नहीं गई ना हम उसके समीप गए।
1: क्या आपको भरोसा है कि जो एसआईटी की जांच है उससे पूरा सच सामने आ जाएगा?
4: अब देखिए इसमें अंदाज से तो कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये मामला बड़ा था, बड़ा इस सेंस में कि ये राष्ट्र का मामला है और प्रभु श्री राम के मंदिर का है, प्रभु तो विश्वव्यापी हैं, प्रभु तो सबके हैं, और उनके दरबार से, उनके मंदिर से चोरी हो जाए, डकैती हो जाए और देश के तमाम लोग आते हैं, तो इसकी सही माने में, हमारी माने तो इसकी जांच जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा या टीम द्वारा होनी चाहिए थी, और जांच के पहले जो भी उसमें ट्रस्ट में हैं उनको अलग कर देना चाहिए, उनको उसमें दूरी रखना चाहिए था, तब जांच ठीक से हो जाती और जांच प्रभावित करने का कहीं दूर दूर तक, कोसों दूर तक किसी को संदेह न होता।
1: All right, Avadesh Prasad, Member of Parliament of Faizabad. I appreciate your time. Thank you for joining me on the show now. Shantanu Gupta, political analyst and author. We also have Vivek Silas, spokesperson of the Samajwadi Party. Shantanu, coming to you, it's almost like now established fact that embezzlement has happened, that there has been some kind of loot which has happened. There have been lapses, there has been negligence in the entire maintenance, that there has been problem with the counting of the money and the valuables. And what is stopping the state government from ensuring an FIR? Isn't that the first step towards an investigation?
7: I think two things. I think Supreme Courts have multiple cases where they have established SIT can be formed in cases before an FIR. So that's established fact that can. So in this procedure also it happened. An FIR can come after SIT. Any SIT in any case, an FIR can come before SIT. There are presidents, multiple presidents, and Supreme Court has given clear guideline, right? So there is not one way about it. Second thing, you started with, it's almost evident. I don't know based on which fact you're taking it's evident. Because I am not privy to the SIT reports. India Today or Maria Shakil is privy to the SIT report. That's a different fact. I have not seen the SIT report. I have only seen multiple TV allegations where starting from Samajwadi Party person Pawan Pandey, he said 7.5 crores. Arvind Kejriwal said 200 crores. Someone said 1,000 crores. These are the different numbers floating around. People have created a bhatija of Champat Rai. People have created the bhatija of Gopal Rai. I realize the name is not even Gopal Rai. Name is something else. So there are multiple theories floating around. The two boxes of jewelry, have they gone to the strong room where jewelries are kept? So I think till the time I'll get an official statement from the three people of SIT or the report, I will not become a James Bond. Once the report is out, it has serious allegations. And then the way the report will go, the culprits, whoever were protecting them, but were the senior people complicit in it, or is it only a process?
1: Given the nature of allegation as sources are indicating that there are names that have been mentioned in the SIT report, and these are those who were looking into the donations and management of the funds, those engaged in the counting process while also taking it to the bank, and also responsible for the upkeep of the CCTV footage.
7: Yes.
1: Here is Yogi Adityanath, who promised that within 15 days, the entire inquiry will be finished, which has happened. He has also promised that action will be taken. What next?
7: I'm saying you're right. So you again use the word sources said. Something sources can be if you have interviewed, if you got some sources from the three SIT members or from the Home Secretary or from Yogi Adityanath. These are the only 4 or 5 people who are privy to this SIT report. Apart from that, I doubt anything can be quoted. But again, based on the media report, I'm sure the way Yogi Adityanath ran his administration in 9.5 years, I'm sure the strictest of the action will be taken if the culprits are found and whoever is found complete or complicit. I think you also differentiate if the senior people are complicit or they're incompetent. Right? They did not do a proper monitoring or they were complicit in the allegations once proven. I'm always telling once proven.
1: Okay, Vivek.
7: I don't have any sources. I don't have any sources in the three SIT people.
1: Fine enough.
7: Did not talk to Sanjay Prasad ji. I did not talk to Yogi Adityanath ji.
1: These
7: are only 5 people who might be knowing about the report. Rest all is allegations and rumors.
1: So you are saying everything is in the realm of allegation. Vivek Silas, so perhaps the Samajwadi Party should also wait for a little longer before demanding that an FIR be lodged immediately.
8: As Mr. Shantanu Gupta was saying, as if nothing has happened, you know. It's so incredible what he has just stated, you know. What I feel at the moment,

0: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा।
1: इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं, या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख रेख सब बंद है, सब बाहर के आदमी खड़े क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते थे, इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
2: The investigation announced after a public tragedy feels like a fig leaf to cover up for the larger web of apathy.
3: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कुछ चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
2: But the आदमी who has just lost a loved one in the fire is no longer willing to believe anything. All 15 families are left with the same bitter conviction. No matter whose government it is, nothing will happen. Because just like Aam Aadmi, even the truth seems to get buried under the debris. And the rest of us simply move on. Jo hua, so hua. Bureau Report, India Today.
4: The Lucknow fire exposed shocking safety lapses, but are similar dangers lurking elsewhere? India Today traveled across three cities to find out. What we discovered should worry us all. Here's our reality check.
5: Young and promising lives lost. But even as Lucknow mourns, a chilling question remains. Have the lessons of this tragedy been learned? India Today traveled to coaching and training hubs in different cities. What we found should worry every parent. At Bhopal's coaching hub, students point to hazards all around them. A single entry and exit, exposed electrical wires and narrow lanes choked with parked two-wheelers.
6: हम जिस जगह पे मौजूद हैं, उस गली की आप पहले स्थिति देखिए। उस गली में अगर आप देखें, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे दोनों तरफ गली में यहाँ पे दोपहिया वाहन की कतार लगी हुई है, और इसके चलते यहाँ पर आप समझिए कि आपात स्थितियों में ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का तार और उनके जालों को आप देखिए। सामने जो ट्रांसफार्मर और बिजली की डीपी आप देख रहे हैं, और उससे निकले हुए बिजली के तालों का जो मकर जाल है, वो कैसे पूरी तरीके से इस गली को घेरे हुए है, उसे देख के आप अंदाजा लग जाएगा कि कैसे राजधानी भोपाल के कोचिंग संस्थान इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं।
7: वहाँ पे ज्यादातर सकरी गलियां हैं, तो डर का माहौल रहता है, बिकॉज आग लगेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, और ऊपर से जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे पैक है, तो इमरजेंसी गेट या खिड़की वगैरह कुछ नहीं है।
6: इमरजेंसी व्हीकल्स के आने का रास्ता है या नहीं है?
8: मुझे नहीं लगता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, तो इससे और ज्यादा चांसेस है फायर लगने के।
5: As India Today accompanied inspection teams, multiple violations came under scrutiny.
6: नगर निगम की टीम भोपाल के कोचिंग हब कहे जाने वाले एमपी नगर में पहुंची है, और जो सबसे बड़ा खतरा इनको दिखा है यहाँ पे, वो छतों पे इस तरीके से रखे हुए एयर कंडीशन और उनसे निकला हुआ बिजली के तारों का पूरा गुच्छा जो है, हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जो नगर निगम की टीम है वो एंट्री और एग्जिट को देख रही है कोचिंग में।
5: Travel hundreds of kilometers south to Hyderabad and the concerns look strikingly familiar.
9: When we came across these institutes here, initially we did not find any safety equipments, but when we move further, certain blocks further, you have a safety equipment or a machinery installed here. But let us look at the condition of this particular machinery. How is it? How is the equipment installed? How is it going to help when its conditions look like this? This, in the sense, the pipe here has completely rusted, and it's looked like it's been maintained, or maintenance has been done long time ago. Well, is this kind of equipment useful in any emergency situation? Who is responsible?
5: Things are no different in Rajasthan.

0: where our reality check in Jaipur found several alleged fire safety lapses.
1: कोचिंग में से ये सीढ़ियाँ छोटी है मगर इसमें बहुत रिस्क है, ऐसे हम देख सकते हैं.
2: The mock drills are continuously happening and we are known to what to do when the fire fire will take place.
0: Three cities, three reality checks, and one uncomfortable question. Must India wait for another Lucknow before safety stops being an afterthought? With Ravish Pal Singh, Abdul Bashir, and Devankur, Bureau Report, India Today.
3: 15 young lives lost. Now the focus is on accountability. How did a building with alleged safety violations continue to operate? And could better precautions have saved lives? With arrests made and an SIT investigation underway, Santosh Sharma examines the lapses that may have turned into a fire into a catastrophe. This report tells you that.
0: A tragedy that has shaken the entire nation. The glaring safety lapses make the Lucknow tragedy even more painful. These lapses turned a building into a death trap that engulfed 15 innocent lives. On Monday afternoon, a massive fire broke out in a three-story building in Lucknow's Aliganj area. Just one way in and one way out, the three-story box-like building became a furnace for students who succumbed to suffocation and flames.
4: Sirf ye ek pura sa ek chota sa एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है. इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से और कोई रास्ता था ही नहीं.
0: द फ्लोर दैट हैड हाउस्ड द एनिमेशन इंस्टीट्यूट हैड एन ऑटोमेटिक डोर ऑपरेटेड विद अ बायोमेट्रिक लॉक. द डोर गॉट शट ड्यूरिंग द फायर ट्रैपिंग दोज इनसाइड. द बिल्डिंग हैड अ सिंगल नैरो स्टेयरकेस लिंकिंग द अपर फ्लोर्स टू द ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट, further limiting movement as smoke filled the premises.
4: ये उस basement की तस्वीरें हैं, उस complex के basement की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये आग लगी. मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट, तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स नुमा था. एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं. इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है.
0: The lone access route was lined with air conditioning panels, tangled wires and other equipment fixed along a narrow passage, leaving those inside with little room to escape once the fire spread.
4: ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके. यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है. तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया.
0: The tragedy has also prompted questions over how a commercial box-like building was operating in a residential area with no fire NOC in place.
4: जब रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शा पास करा करके कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पर तीन दुकानें, कोचिंग सेंटर, पेट्स की शॉप, उसके बाद एक स्टूडियो चल रहा है, नीचे शॉप्स हैं, तो एलडीए के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं.
0: मल्टीपल बिल्डिंग ओनर्स हैव बीन अरेस्टेड, ऑफिशियल्स हैव बीन सस्पेंडेड. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज ऑर्डर्ड एन एसआईटी प्रोब, बट कैन द गवर्नमेंट एंश्योर दैट मैन मेड डिजास्टर्स आर नॉट रिपीटेड? विद संतोष शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
3: The Lucknow fire has raised troubling questions about safety in India's coaching centres. 15 young lives have been lost, but was this tragedy preventable? Because just 2 years after the Rajinder Nagar coaching centre disaster in Delhi, an India Today special investigation has found similar safety concerns still persisting. Have any lessons been really learned, or are we still waiting for another tragedy? Our special investigation report.
0: The flames of the inferno at Lucknow's Aliganj area coaching center continue to gnaw at India's conscience. But the tragedy that consumed 15 lives isn't the first time India's students have had to pay the price of their lives for daring to follow the dream. Barely 2 years ago, we all watched in horror as three UPSC aspirants drowned in the basement of Rao's IAS study circle in Delhi's old Rajinder Nagar. The recipe for disaster was common in both cases. Ignored safety norms, improper entry and exit routes, and most critically, a biometric entry system that stopped operating, trapping the students. But what lessons really learned from 2024? An investigation by India Today's special investigation team has revealed that in the education hub of Yamuna Vihar in Northeast Delhi, coaching centers still operate in violation of the regulations. At the Future World Technical Institute, a basement room measuring barely 10 feet by 10 feet has been converted into a library where around 25 study cubicles have been created. What's even more surprising is that the entry to this library is through a biometric system, the same kind whose failure had come under scrutiny during the Rajinder Nagar tragedy in Delhi and the Aliganj Inferno in Lucknow.
5: क्या फोटो लेना चाहूँगा फोटो लेना

0: But the story that's breaking this evening, the political heat is now building up on Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav after the Indian Express report this morning cited a windfall rise in assets owned by Mohan Yadav and his family members. According to the report, the family bought 253 acres after he became the Chief Minister. Madhya Pradesh Chief Minister is denying any land fraud in Ujjain. The MP CMO sources are claimed no land bought by Yadav after becoming Chief Minister. No land was bought by his wife as well, and a full clarification will be released soon. But the news report has triggered a political storm because the fact is that in a number of cases, Mr. Yadav and his family benefited from a change in land user that has taken place in several of those properties, with roads also being moved through the very areas where the property had been bought by Mr. Yadav and his family members. According to the report, there is clear cases of a lack of propriety and a conflict of interest that led to windfall profits for Mr. Yadav and his family members, all of whom had various property companies. The opposition now is baying for his blood, demanding Mohan Yadav's resignation, claiming this is a major land scam that has taken place.
1: पूरे देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार चरम पे है इनका, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, छत्तीसगढ़, हर जगह ये जहां भी भाजपा की सरकारें हैं ये पूरी तरीके से लोग लूटम लूट कर रखें। यही कारण है कि आज अलीगंज जैसी घटनाएं घट रही हैं, यही कारण है कि आज जो आपने कहा मध्य प्रदेश में, जो क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही शामिल है तो नीचे के लोगों को कैसे कहेगा कि ईमानदारी से काम करो, जो मुखिया बैठा है वही वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये भाजपा के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
2: मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां जहां हाईवे हो रहा है वहां पे पहले से जानकारी है कि यहां पे हाईवे होना है, यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ना है, वहां से जमीन ले ले। जैसे मुझे पता है कि आज यहाँ पे बाईपास होना है तो दाम तो बढ़ेगा ही, तो पहले में तीन एकड़ खरीद लिया। तो जब वो ऐसा कर रहे तो अभी उनके सब कोई उनके फैमिली में इनके इन्वॉल्व है, इनके कजन, इनके सब कुछ। तो जब आज आप देखिए बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना जो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी हटाना पड़ा। तो हम तो कहते हैं जब बीजेपी करता है तब ये तपस्या है और जब मामूली लोग करते तब ये स्कैम हो जाता है।
3: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि तीन मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीद कर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है, ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ, रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है।
0: Okay, so there you have the opposition turning on the heat on the Madhya Pradesh Chief Minister, accusing him of a major land scam, insider trading, collusion, making windfall profits by getting the land user changed and knowing in advance exactly where roads and highway projects would come up and buying the land beforehand. Ravish Pal Singh now joined me. Ravish, opposition keh raha hai ki Mohan Yadav ko istifa dena chahiye kyunki Mohan Yadav aur uske parivar ne बहुत बड़े प्रॉफिट किए हैं इस तरह के जमीन खरीदी में। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी ने तो सुबह से चुप्पी साधी है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय पब्लिकली क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री खुद आगे आकर अपनी डिफेंस क्यों नहीं कर रहे हैं?
5: बिल्कुल, और यही कोशिश लगातार हमारी है सुबह से। न्यूज रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे
0: आप म्यूट पे हैं। जी जी,
5: कई सारे एलिगेशन जो है कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद आज लगाए गए थे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही उनकी सरकार के किसी मंत्री की तरफ से अब तक किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में आया है। इंडिया टुडे लगातार उनका वर्जन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शाम को सीएम ऑफिस से जुड़े हुए खाइबी सोर्सेस की तरफ से इतना जरूर बताया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव ने, यानी दिसंबर 2023 के बाद से, उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है और ना ही उनकी पत्नी सीमा यादव ने कोई जमीन खरीदी है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि परिवार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जिनके आरोप लग रहे न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन कंपनियों ने जमीन खरीदी है, तो फिर परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां अगर जमीन खरीद रही है तो क्या उसमें परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? इसका कोई जवाब फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से या भाजपा की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। और आपको ये बता दें कि जो एलिगेशन सब मुख्यमंत्री के ऊपर लग रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने आए हैं और उनका बचाव कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और उससे पहले वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, और एलिगेशन से ही लग रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत पुराने समय से रियल इस्टेट बिजनेस में रहे हैं और उनका पूरा परिवार रियल इस्टेट बिजनेस में रहा है, और खासतौर से दिसंबर 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से तकरीबन 137 प्लॉट्स जो कि है वहां पे खरीदे गए हैं। हालांकि अब ये देखना है कि अगर किसी भी तरीके का कोई खंडन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तो उस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद लगाए गए हैं उसका जवाब किस तरीके से मोहन यादव या फिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि मोहन यादव अब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरी मशीनरी कहीं ना कहीं अब ये देखने में चुकी है कि जो एलिगेशन उसके ऊपर लगे हैं आखिर उसकी सच्चाई क्या है, ताकि उसके बाद वो एक डिटेल्ड वर्जन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी कर सके।
0: But the fact is, Ravish explaining there that clearly after he became chief minister also, 137 plots over 160 acres were acquired by companies linked to Mohan Yadav's family. And the fact is, these were the very land which then saw enormous rise in profitability because that's where various infrastructure projects were created. Did the chief minister therefore know in advance exactly where to purchase the land and pass that information on to his family members? This is clearly a story that won't go away. So far as Ravi says, the chief minister unwilling to comment publicly, no official statement, BJP entirely silent, but clearly this is a huge embarrassment for the BJP in Madhya Pradesh. And the question that the Congress and others are raising, where are the enforcement directorate and where are the agencies when it comes to alleged scams in BJP ruled states? Will anyone from the investigative agencies investigate Mohan Yadav's assets? And this, remember, is also seen as a familiar type of land dealing that's done across the country, where land is acquired in agriculture land and then changed so that windfall profits can be made. Mohan Yadav is clearly under the scanner and we are still waiting for an official statement from him. While CM's office denies media reports, those are only unofficial statements so far. Official statement has still not come from Mr. Mohan Yadav on the allegations made in that Indian Express report. We'll keep tracking that story and not let it pass. You can be assured of that, at least here on the news today. Let me turn from there to our special focus today. What began as a fire emergency has quickly turned into one of Lucknow's deadliest tragedies in recent years. Over 15 people dead. Investigators are uncovering shocking safety violations, from a biometric locked door to a single escape route. The big question is, who is responsible for the 15 lives, many of them youngsters, that have been lost. Santosh Sharma with our top story.
6: A tragedy that has shaken the entire nation. The glaring safety lapses make the Lucknow tragedy even more painful. These lapses turned a building into a death trap that engulfed 15 innocent lives. On Monday afternoon, a massive fire broke out in a three-story building in Lucknow's Aliganj area. Just one way in and one way out, the three-story box-like building became a furnace for students who succumbed to suffocation and flames.
7: सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है. इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से और कोई रास्ता था ही नहीं.
6: The floor that had housed the animation institute had an automatic door operated with a biometric lock. The door got shut during the fire, trapping those inside. The building had a single narrow staircase linking the upper floors to the ground floor and basement, further limiting movement as smoke filled the premises.
7: ये उस basement की तस्वीरें हैं, उस complex के basement की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये आग लगी. मतलब आप सोचिए कि तीन floor का basement, तीन floor की पूरी building और basement अलग, चार floor का एक तरीके से construction था, और ये box रूमा था. Entry और exit के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं. Emergency में entry exit जो थी, वो कोई बनाई नहीं गई थी. सब एक ही point से entry exit है.
6: The lone access route was lined with air conditioning panels, tangled wires and other equipment fixed along a narrow passage, leaving those inside with little room to escape once the fire spread.
7: ये देखिए ये जो AC panel लगे हैं, मतलब entry exit point भी कोई free नहीं था कि कोई freely आ सके जा सके. यहाँ पर भी AC के panel का पूरा जाल लगा हुआ है. तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया.
6: The tragedy has also prompted questions over how a commercial box-like building was operating in a residential area with no fire NOC in place.
7: जब रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शा पास करा करके कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पर तीन दुकानें, कोचिंग सेंटर, पेट्स की शॉप, उसके बाद एक स्टूडियो चल रहा है, नीचे शॉप्स हैं, तो एलडीए के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं.
6: मल्टीपल बिल्डिंग ओनर्स हैव बीन अरेस्टेड, ऑफिशियल्स हैव बीन सस्पेंडेड. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज ऑर्डर्ड एन एसआईटी प्रोब, बट कैन द गवर्नमेंट एंश्योर दैट मैन मेड डिजास्टर्स आर नॉट रिपीटेड. विद संतोष शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
0: Horrifying visuals and clear signs of major lapses. The big question, of course, who will be held accountable for the loss of those 15 lives? Why are fire safety lapses noticed only after the tragedy? Not just owners, will netas and their bureaucrats be also made to pay? Why should students in particular pay a deadly price

0: Questions over donations made by devotees at the Ayodhya Ram Mandir are now at the... Questions over donations made by devotees at the Ayodhya Ram Mandir are now at the center of a major legal and political storm. The special investigation team probing the alleged donation theft has submitted its preliminary report to the Uttar Pradesh government, raising concerns over the system used to count, monitor, and safeguard temple offerings. Investigators have also examined how personnel responsible for counting the donations were selected. As per the report, gross negligence was also found during security checks and frisking of employees during arrival and departure from duty. Employees handling cash were allegedly not screened properly. As per SIT, the dress code for employees counting cash was also not enforced strictly. Employees were even seen standing in front of cameras to hide the theft. SIT probe also observed negligence in transportation of donation boxes from the temple premises to the final deposit of cash in the bank. Sources indicate that no individual has been given a clean chit in the investigation so far. A member of the SIT has confirmed in an exclusive conversation with India Today that further action will be determined after the report is examined at the government level.
1: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकेंड पार्ट में जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा उसमें सबमिट करेंगे.
0: Meanwhile, a PIL filed in the Apex Court has sought a CBI-led SIT probe into the handling of the donations. The plea demands registration of an FIR, a time-bound investigation into alleged financial irregularities, and a probe into possible embezzlement or corruption. The petition argues that transparency is essential as the donations are linked to the faith of crores of devotees. The controversy has sparked a political slugfest. Opposition leaders have targeted the BJP government, questioning who is being projected and alleging that Lord Ram's name is being used for political gains.
2: Ram ke naam par vyapar karne wale log hain. Iska natija 24 ki chunav mein inko mil gaya. Inko mil gaya. Uttar Pradesh mein haare hain. Lok Sabha ki chunav mein haare hain. और अब 6 महीना रह गया है चुनाव का तो ये भी जान रहे हैं अब इनकी करारी हार होगी इसलिए डिस्टर्ब चल रहे हैं बाबा
3: मोगले चंद्र को देखो.
0: Yogi Adityanath has urged political parties and devotees not to draw conclusions before the investigation is completed, saying the probe will reveal the truth.
4: Ayodhya के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं.
0: The SIT's preliminary findings have shifted the focus from alleged theft to the systems meant to prevent it. As the government examines the report, the focus is on accountability in the handling of donations at one of the country's most revered temples. Bureau Report, India Today.
5: The SIT report raises very serious concerns about the counting of donation, handling of that money, and the monitoring mechanism. How is this possible unless lapses were built into the system? Because this is unacceptable breach of faith in the trust that the devotees have in the Sri Ram Janmabhoomi temple and the Tirth Kshetre that is meant to handle the temple, manage the donation. Will the guilty be identified, prosecuted and punished, including top officials of the trust for their acts of omission and commission? Joining me on India First is Sriraj Nair, represents the Vishwa Hindu Parishad. Anurag Bhadoria is the spokesperson of the Samajwadi Party, the whistleblower in this case. The Samajwadi Party advocate Vineet Jindal is an advocate and political analyst, as is advocate Kapil Madan, lawyer and political commentator. I want to begin by asking you, Sriraj Nair, this is sin. Loot in the name of Maryada Purushottam Shri Ram. How can there be lapses in donation counting and the monitoring mechanism? What was the trust management doing, sir?
6: Well, Gaurav, first of all, you heard Pujni Yogi ji. It is a trust management itself which requested for a SIT to be formed in case if there is a lapse. And definitely the SIT has come with an interim report. Let us not jump the guns. Let us not jump into any kind of conclusion. There is a lot of media trial happening, lot of rumors, lot of AI-generated videos, lot of rumor-mongering going around. Let us all wait for the report of the SIT. And as Pujari Yogeji also said, and as the trust also believes, that whoever will be found as culprit will be facing the music. There will be strict punishment in case whoever is found to be guilty. But for that matter, the Samajwadi Party or Congress, who have not even visited the temple, they have no rights. During the Congress regime, right from Jawaharlal Nehru till Manmohan Singh's time, from Jeep scam to 2G, 3G, Bofors, Commonwealth, there have been scams after scams.
5: That
6: in Samajwadi Party,
5: opposition.
6: There have been music and
5: that
6: dance
5: is why they are not
6: when
5: in power.
6: Nagar was being burnt. So today,
5: sir, अनुराग भदौरिया आज अगर विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है सर हियर मी आउट आज अनुराग भदौरिया अगर विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि टेम्पल ट्रस्ट ने ही शिकायत की. ट्रेम्पल ट्रस्ट ने तो शुरू में कहा कि कुछ गड़बड़ है ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का प्रोपोगंडा है, ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगंडा है. क्या ट्रस्ट की नाक के नीचे ये हो रहा था? ये राम के नाम की लूट तो हमने सुनी थी, ये तो राम के नाम पर लूट का मामला सामने आ रहा है.
7: देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी ने ये आवाज उठाई कि जो दान पात्र है उस दान पात्र में गड़बड़ी है, चोरी हो रही है दान पात्र के पैसों में. तो उसके जो वहां पे ट्रस्टी थे, जो उसके अंदर के लोगों ने एसआईटी की मांग की. चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, एसआईटी की मांग की. तो जब आपने एसआईटी
5: की मांग की, कोशिश की, बोला ऐसा कुछ
7: नहीं, मिथ्या आरोप है ऐसा नहीं. नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ. तो इन्होंने एसआईटी की मांग की, पहले तो उसको नकार रहे थे, फिर आपने फिर हम लोगों ने आवाज उठाई तो फिर उन्होंने एसआईटी की मांग की. तो फिर केस बेसिस पे की कुछ तो गड़बड़ था, तो पहले एफआईआर कराते जो वहां के ट्रस्टी को, जो उनका मैनेजमेंट कमेटी था उसको, जिसपे शक था उस पर एफआईआर कराते और एसआईटी आती उस पर पूरी जानकारी. एफआईआर तो उन्होंने कराई नहीं, एसआईटी बुलाई. तो एसआईटी किस बेस पे बुलाई भाई? आपको कोई, उनको भी तो शंका हुई ना, तो उस शंका के लिए उन्होंने क्या किया, एसआईटी को बुलाया. लेकिन एसआईटी अच्छा होता है, एफआईआर करा के एसआईटी को बुलाते तो कम से कम उन लोगों पे पूरी तरह से इंक्वायरी होती. अब तो धीरे धीरे पता चलने लगा है कि वहां काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही थी, ड्रेस कोड नहीं था, वहां पे कैमरे छुपाए गए, कैमरे के सामने लोग खड़े हो जाते थे, कई बार कैमरे बंद 8-8 महीने तक कैमरे खराब कर दिए गए. ये तो लगातार वहां के महिपाल ने भी बोला है, वहां पे जो लोग और भी रहे उन्होंने आरोप लगाया. ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भाई वो तो बड़े लोग हैं, हम सच वहां बोल नहीं पाएंगे. कमल नया दास जी ने वहां पे, जो महंत कमल नया दास जी है, उन्होंने ही बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है. तो सवाल उठता है. और वहां पे जो वहां पे रजनीश सिंह ने तो चिट्ठी लिखी थी बीजेपी के नेता है.
5: आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि पहला कदम एफआईआर दर्ज होना चाहिए. श्रीराज नायर जी, फर्स्ट स्टेप इन एनी लीगल इन्वेस्टिगेशन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. व्हाई हैज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नॉट बीन डन? एसआईटी हैज बीन फॉर्म्ड, बट लीगली ऑन व्हाट बेसिस, सर? वेयर इज द एफआईआर?
6: See, it can be the reverse also. Let the SIT find the person who is guilty in this matter. Who under kiske naam pe FIR karte? We cannot fire the.

0: But the story that's breaking this evening, the political heat is now building up on Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav after the Indian Express report this morning cited a windfall rise in assets owned by Mohan Yadav and his family members. According to the report, the family bought 253 acres after he became the Chief Minister. Madhya Pradesh Chief Minister is denying any land fraud in Ujjain. The MP CMO sources are claimed no land bought by Yadav after becoming Chief Minister. No land was bought by his wife as well, and a full clarification will be released soon. But the news report has triggered a political storm because the fact is that in a number of cases, Mr. Yadav and his family benefited from a change in land user that has taken place in several of those properties, with roads also being moved through the very areas where the property had been bought by Mr. Yadav and his family members. According to the report, there is clear cases of a lack of propriety and a conflict of interest that led to windfall profits for Mr. Yadav and his family members, all of whom had various property companies. The opposition now is baying for his blood, demanding Mohan Yadav's resignation, claiming this is a major land scam that has taken place.
1: पूरे देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार चरम पे है इनका, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, छत्तीसगढ़, हर जगह ये जहां भी भाजपा की सरकारें हैं ये पूरी तरीके से लोग लूटम लूट कर रखें। यही कारण है कि आज अलीगंज जैसी घटनाएं घट रही हैं, यही कारण है कि आज जो आपने कहा मध्य प्रदेश में जो, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही शामिल है तो नीचे के लोगों को कैसे कहेगा कि ईमानदारी से काम करो, जो मुखिया बैठा है वही वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये भाजपा के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
2: मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां जहां हाईवे हो रहा है वहां पे पहले से जानकारी है कि यहां पे हाईवे होना है, यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ना है, वहां से जमीन ले ले। जैसे मुझे पता है कि आज यहां पे बाईपास होना है तो दाम तो बढ़ेगा ही, तो पहले में तीन एकड़ खरीद लिया। तो जब वो ऐसा कर रहे तो अभी उनके आज सबको उनके फैमिली में इनके इन्वॉल्व है, इनके कजन्स, इनके सब कुछ। तो जब आज आप देखिए बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना जो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी हटाना पड़ा। तो हम तो कहते हैं जब बीजेपी करता है तब ये तपस्या है और जब मामूली लोग करते तब ये स्कैम हो जाता है।
3: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि तीन मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए क्या सही है। ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीद कर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है, ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ, रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है।
0: Okay, so there you have the opposition turning on the heat on the Madhya Pradesh Chief Minister, accusing him of a major land scam, insider trading, collusion, making windfall profits by getting the land user changed and knowing in advance exactly where roads and highway projects would come up and buying the land beforehand. Ravish Pal Singh now joins me. Ravish, opposition keh raha hai ki Mohan Yadav ko istifa dena chahiye kyunki Mohan Yadav aur uske parivar ne बहुत बड़े प्रॉफिट किए हैं इस तरह के जमीन खरीदी में। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी ने तो सुबह से चुप्पी साधी है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय पब्लिकली क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री खुद आगे आकर अपनी डिफेंस क्यों नहीं कर रहे हैं?
5: बिल्कुल, और यही कोशिश लगातार हमारी है सुबह से। न्यूज रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे
0: म्यूट पे हैं। जी जी,
5: कई सारे एलिगेशन जो है कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद आज लगाए गए थे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही उनकी सरकार के किसी मंत्री की तरफ से अब तक किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में आया है। इंडिया टुडे लगातार उनका वर्जन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शाम को सीएम ऑफिस से जुड़े हुए खाइली सोर्सेस की तरफ से इतना जरूर बताया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव ने, यानी दिसंबर 2023 के बाद से, उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है और ना ही उनकी पत्नी सीमा यादव ने कोई जमीन खरीदी है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि परिवार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जिनके आरोप लग रहे न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन कंपनियों ने जमीन खरीदी है, तो फिर परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां अगर जमीन खरीद रही है तो क्या उसमें परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? इसका कोई जवाब फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से या भाजपा की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। और आपको ये बता दें कि जो एलिगेशन सब मुख्यमंत्री के ऊपर लग रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने आए हैं और उनका बचाव कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और उससे पहले वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, और एलिगेशन से ही लग रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत पुराने समय से रियल इस्टेट बिजनेस में रहे हैं और उनका पूरा परिवार रियल इस्टेट बिजनेस में रहा है, और खासतौर से दिसंबर 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से तकरीबन 137 प्लॉट जो कि है वहां पे खरीदे गए हैं। हालांकि अब ये देखना है कि अगर किसी भी तरीके का कोई खंडन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तो उस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद लगाए गए हैं उसका जवाब किस तरीके से मोहन यादव या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि मोहन यादव अब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरी मशीनरी कहीं ना कहीं अब ये देखने में चुकी है कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं आखिर उसकी सच्चाई क्या है, ताकि उसके बाद वो एक डिटेल्ड वर्जन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी कर सके।
0: But the fact is, Ravish explaining there that clearly after he became chief minister also, 137 plots over 160 acres were acquired by companies linked to Mohan Yadav's family. And the fact is, these were the very land which then saw enormous rise in profitability because that's where various infrastructure projects were created. Did the chief minister therefore know in advance exactly where to purchase the land and pass that information on to his family members? This is clearly a story that won't go away. So far as Ravi says, the chief minister unwilling to comment publicly, no official statement, BJP entirely silent, but clearly this is a huge embarrassment for the BJP in Madhya Pradesh. And the question that the Congress and others are raising, where are the enforcement directorate and where are the agencies when it comes to alleged scams in BJP ruled states? Will anyone from the investigative agencies investigate Mohan Yadav's assets? And this, remember, is also seen as a familiar type of land dealing that's done across the country, where land is acquired in agricultural land and then changed so that windfall profits can be made. Mohan Yadav is clearly under the scanner and we are still waiting for an official statement from him. While CM's office denies media reports, those are only unofficial statements so far. Official statement has still not come from Mr. Mohan Yadav on the allegations made in that Indian Express report. We'll keep tracking that story and not let it pass. You can be assured of that, at least here on the news today. Let me turn from there to our special focus today. What began as a fire emergency has quickly turned into one of Lucknow's deadliest tragedies in recent years. Over 15 people dead. Investigators are uncovering shocking safety violations, from a biometric locked door to a single escape route. The big question is, who is responsible for the 15 lives, many of them youngsters, that have been lost. Santosh Sharma with our top story.
6: A tragedy that has shaken the entire nation. The glaring safety lapses make the Lucknow tragedy even more painful. These lapses turned a building into a death trap that engulfed 15 innocent lives. On Monday afternoon, a massive fire broke out in a three-story building in Lucknow's Aliganj area. Just one way in and one way out, the three-story box-like building became a furnace for students who succumbed to suffocation and flames.
7: Sirf ye ek pura sa ek chota sa ek box numa ye building hai, is box numa building ke andar hi log sab isi se jo bacche the jo log the wo isi chote se raste se aur koi rasta tha hi nahi.
6: The floor that had housed the animation institute had an automatic door operated with a biometric lock. The door got shut during the fire, trapping those inside. The building had a single narrow staircase linking the upper floors to the ground floor and basement, further limiting movement as smoke filled the premises.
7: ये उस basement की तस्वीरें हैं, उस complex के basement की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट, तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स रूमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है।
6: The lone access route was lined with air conditioning panels, tangled wires and other equipment fixed along a narrow passage, leaving those inside with little room to escape once the fire spread.
7: ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके। यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है। तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया।
6: The tragedy has also prompted questions over how a commercial box-like building was operating in a residential area with no fire NOC in place.
7: जब रेजिडेंशियल इलाके में रेजिडेंशियल नक्शा पास करा करके कॉम्प्लेक्स बन गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पर तीन दुकानें, कोचिंग सेंटर, पेट्स की शॉप, उसके बाद एक स्टूडियो चल रहा है, नीचे शॉप्स हैं, तो एलडीए के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं।
6: Multiple building owners have been arrested. Officials have been suspended. Chief Minister Yogi Adityanath has ordered an SIT probe. But can the government ensure that man-made disasters are not repeated? With Santosh Sharma, Bureau Report, India Today.
0: Horrifying visuals and clear signs of major lapses. The big question, of course, who will be held accountable for the loss of those 15 lives? Why are fire safety lapses noticed only after the tragedy? Not just owners, will netas and their bureaucrats be also made to pay? Why should students in particular pay a deadly price for this civic apathy? Why are smart cities urban debt traps? Isn't this a classic case of criminal negligence or dare one say culpable homicide? Siddharth Luthra, senior advocate, joining me. Rajesh Panwar is former chief fire officer, Delhi. Also joining me is Arvind Kumar Jain, former DGP UP, and Neelam Krishnamurthy, President Association of the Victims of Upar Tragedy. I want to come to you, Siddharth Luthra, first, because this story, our story has shown severe lapses, single staircase, absence of a fire NOC, illegal commercial conversion of a residential building into a residential zone. Can, therefore, those who owned the building or indeed those authorities who allowed such a building to carry on be held vicariously liable for this systemic criminal negligence? Or do you believe that they will get off the hook given the way the law is?
8: Well, the law is very clear. The owners who built the building in breach of the bylaws or had it, those who were occupying it or using it are also liable to be proceeded against. And lastly, and this is something which is a catch. You know, we don't look at these buildings when they are built in breach of all building bylaws. Then when they're operationalized, when they continue to operate, and throughout that period, the municipal and other authorities turn a blind eye. Somewhere along the line, we have to you know, we are always reactive in such incidents. A tragedy happens, lives are lost, and this is not the first time, and it's tragically not going to be the last time. Our whole approach has to change. The building bylaws, unfortunately, and it's a reality which we must understand, the municipalities throughout the country behave in a manner where they facilitate often illegalities. And if illegalities are facilitated for consideration, then these incidents are going to keep recurring.
0: No. So who is liable? Only the owners of the building? What about the public officials? No, are the public officials who failed to ensure the regulations were adhered to, are they in any way liable or not under the law?
8: You're absolutely right. In fact, I'm going to add something more. The point is, any investigation is going to stop short at the investigators who allowed this building to operate in the recent past. But the point is, we have to go back and see when it was built, who allowed this construction to come up completely in breach of the norms, with no safety norms, who gave it the fire NOC, if any, and if there was no fire NOC, what was the fire department doing? Were they asleep? Secondly, the municipal department, the electricity department, these are authorities which are supposed to oversee the operation and construction, especially in the context of a commercial premises. So are we, in the guise of privatizing a lot of these services, are we turning a blind eye to basic human safety elements? And I believe that culpability must not stop short at one individual. There may be culpability of criminality. There will be disciplinary action. So those who allowed this to happen in the initial stage should also be proceeded against. But unfortunately, human memory and our memories are short, and we stop short of a criminal action. It gets into the news. Few people are arrested. A charge sheet is filed. And the matter goes on, and everybody forgets about the more systemic and problematic issue that is making the officials responsible.
0: You know, one of those officials that was just mentioned by Mr. Luthra, Rajesh Pawar, is the fire department. This building did not have a fire NOC for a three-story building which housed commercial complexes. It was a plot that was originally meant for residential use. Under building bylaws, reportedly such certificates are required for buildings only above 15 meters. This complex was less than that. But it only had a single staircase, it had a biometric lock system, and the fire safety measures were not in place. So, is it the responsibility of the fire department to ensure that such buildings which transfer from residential to commercial use at least have the basic fire NOC and systems in place or not?
9: Rajdeep, as per your statement that there is a violation, now, the violation is to be seen by the building sanctioning authority that what violation has been done. The violation can be of two types, its use or its construction. So, first of the stage is the construction. When the building has been constructed, whether a violation has been done during that construction, the staircase where the staircase was permitted by the means architect has submitted a design to the building sanctioning authority where that staircase was already there, and how many staircases should have been over there. So what the building sanctioning authority has visualized, so

0: But the story that's breaking this evening, the political heat is now building up on Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav after the Indian Express report this morning cited a windfall rise in assets owned by Mohan Yadav and his family members. According to the report, the family bought 253 acres after he became the Chief Minister. Madhya Pradesh Chief Minister is denying any land fraud in Ujjain. The MP CMO sources are claimed no land bought by Yadav after becoming Chief Minister. No land was bought by his wife as well, and a full clarification will be released soon. But the news report has triggered a political storm because the fact is that in a number of cases, Mr. Yadav and his family benefited from a change in land user that has taken place in several of those properties, with roads also being moved through the very areas where the property had been bought by Mr. Yadav and his family members. According to the report, there is clear cases of a lack of propriety and a conflict of interest that led to windfall profits for Mr. Yadav and his family members, all of whom had various property companies. The opposition now is baying for his blood, demanding Mohan Yadav's resignation, claiming this is a major land scam that has taken place.
1: पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार चरम पे है इनका, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, छत्तीसगढ़, हर जगह ये जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं ये पूरी तरीके से लोग लूटम लूट कर रखें। यही कारण है कि आज अलीगंज जैसी घटनाएं घट रही हैं, यही कारण है कि आज जो आपने कहा मध्य प्रदेश में जो, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही शामिल है तो नीचे के लोगों को कैसे कहेगा कि ईमानदारी से काम करो, जो मुखिया बैठा है वही वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये भाजपा के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
2: मोहन यादव जी के परिवार जो है 140 करोड़ से भी ज्यादा, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहां जहां हाईवे हो रहा है वहां पे पहले से जानकारी है कि यहां पे हाईवे होना है, यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ना है, वहां से जमीन ले ले। जैसे मुझे पता है कि आज यहाँ पे बाईपास होना है तो दाम तो बढ़ेगा ही, तो पहले में 3 एकड़ खरीद लिया। तो जब वो ऐसा कर रहे तो अभी उनके आज सब कोई उनके फैमिली में इनके इन्वॉल्व है, इनके कजन, इनके सब कुछ। तो जब आज आप देखिए बीजेपी का हरियाणा का कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना जो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको भी हटाना पड़ा। तो हम तो कहते हैं जब बीजेपी करता है तब ये तपस्या है और जब मामूली लोग करते तब ये स्कैम हो जाता है।
3: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीद कर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है, ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ, रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है।
0: Okay, so there you have the opposition turning on the heat on the Madhya Pradesh Chief Minister, accusing him of a major land scam, insider trading, collusion, making windfall profits by getting the land user changed and knowing in advance exactly where roads and highway projects would come up and buying the land beforehand. Ravish Pal Singh now joins me. Ravish, opposition keh raha hai ki Mohan Yadav ko istifa dena chahiye kyunki Mohan Yadav aur uske parivar ne बहुत बड़े प्रॉफिट किए हैं इस तरह के जमीन खरीदी में। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी ने तो सुबह से चुप्पी साधी है

0: मुख्यमंत्री कार्यालय पब्लिकली क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री खुद आगे आकर अपनी डिफेंस क्यों नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, और यही कोशिश लगातार हमारी है सुबह से। न्यूज रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे
0: रमेश आप म्यूट पे हैं। जी
1: और कई सारे एलिगेशन जो है कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद आज लगाए गए थे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही उनकी सरकार के किसी मंत्री की तरफ से अब तक किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में आया है। इंडिया टुडे लगातार उनका वर्जन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शाम को सीएम ऑफिस से जुड़े हुए खाइली सोर्सेस की तरफ से इतना जरूर बताया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव ने, यानी दिसंबर 2023 के बाद से, उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है और ना ही उनकी पत्नी सीमा यादव ने कोई जमीन खरीदी है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि परिवार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जिनके आरोप लग रहे न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन कंपनियों ने जमीन खरीदी है, तो फिर परिवार से जुड़ी हुई कंपनियां अगर जमीन खरीद रही है तो क्या उसमें परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? इसका कोई जवाब फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से या भाजपा की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। और आपको ये बता दें कि जो एलिगेशन अब मुख्यमंत्री के ऊपर लग रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव सामने आए हैं और उनका बचाव कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और उससे पहले वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, और एलिगेशन से ही लग रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत पुराने समय से रियल इस्टेट बिजनेस में रहे हैं और उनका पूरा परिवार रियल इस्टेट बिजनेस में रहा है, और खासतौर से दिसंबर 2023 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से तकरीबन 137 प्लॉट्स जो कि है वहां पे खरीदे गए हैं। हालांकि अब ये देखना है कि अगर किसी भी तरीके का कोई खंडन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तो उस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से न्यूज रिपोर्ट के बाद लगाए गए हैं उसका जवाब किस तरीके से मोहन यादव या फिर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आता है, क्योंकि मोहन यादव अब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरी मशीनरी कहीं ना कहीं अब ये देखने में चुकी है कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं आखिर उसकी सच्चाई क्या है, ताकि उसके बाद वो एक डिटेल्ड वर्जन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी कर सके।
0: But the fact is, Ravish explaining there that clearly after he became chief minister also, 137 plots over 160 acres were acquired by companies linked to Mohan Yadav's family. And the fact is, these were the very land which then saw enormous rise in profitability because that's where various infrastructure projects were created. Did the chief minister therefore know in advance exactly where to purchase the land and pass that information on to his family members? This is clearly a story that won't go away. So far as Ravi says, the chief minister unwilling to comment publicly, no official statement, BJP entirely silent, but clearly this is a huge embarrassment for the BJP in Madhya Pradesh. And the question that the Congress and others are raising, where are the enforcement directorate and where are the agencies when it comes to alleged scams in BJP ruled states? Will anyone from the investigative agencies investigate Mohan Yadav's assets? And this, remember, is also seen as a familiar type of land dealing that's done across the country, where land is acquired in agriculture land and then changed so that windfall profits can be made. Mohan Yadav is clearly under the scanner and we are still waiting for an official statement from him. While CM's office denies media reports, those are only unofficial statements so far. Official statement has still not come from Mr. Mohan Yadav on the allegations made in that Indian Express report. We'll keep tracking that story and not let it pass. You can be assured of that, at least here on the news today. Let me turn from there to our special focus today. What began as a fire emergency has quickly turned into one of Lucknow's deadliest tragedies in recent years. Over 15 people dead. Investigators are uncovering shocking safety violations, from a biometric locked door to a single escape route. The big question is, who is responsible for the 15 lives, many of them youngsters, that have been lost. Santosh Sharma with our top story.
2: A tragedy that has shaken the entire nation. The glaring safety lapses make the Lucknow tragedy even more painful. These lapses turned a building into a death trap that engulfed 15 innocent lives. On Monday afternoon, a massive fire broke out in a three-story building in Lucknow's Aliganj area. Just one way in and one way out, the three-story box-like building became a furnace for students who succumbed to suffocation and flames.
3: सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है. इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से और कोई रास्ता था ही नहीं.
2: The floor that had housed the animation institute had an automatic door, operated with a biometric lock. The door got shut during the fire, trapping those inside. The building had a single narrow staircase linking the upper floors to the ground floor and basement, further limiting movement as smoke filled the premises.
3: ये उस basement की तस्वीरें हैं, उस complex के basement की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये आग लगी. मतलब आप सोचिए कि तीन फ्लोर का बेसमेंट, तीन फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, चार फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स रूमा था. एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं. इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से एंट्री एग्जिट है.
2: द लोन एक्सेस रूट वॉज लाइन विद एयर कंडीशनिंग पैनल, टैंगल्ड वायर्स एंड अदर इक्विपमेंट fixed along a narrow passage, leaving those inside with little room to escape once the fire spread.
3: ये देखिए ये जो एसी पैनल लगे हैं, मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट भी कोई फ्री नहीं था कि कोई फ्रीली आ सके जा सके. यहाँ पर भी एसी के पैनल का पूरा जाल लगा हुआ है. तो आप समझिए कि किस तरीके के हालात और किस तरीके से मानकों को, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया.
2: The tragedy has also prompted questions over how a commercial box-like building was operating in a residential area with no fire NOC in place.
3: जब residential इलाके में residential नक्शा पास करा करके complex बन गया, shopping complex बन गया, वहाँ पर तीन दुकानें, coaching center, pets की shop, उसके बाद एक studio चल रहा है, नीचे shops हैं, तो LDA के अधिकारियों की, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी, तो ये तमाम सवाल हैं.
2: Multiple building owners have been arrested, officials have been suspended. Chief Minister Yogi Adityanath has ordered an SIT probe, but can the government ensure that man-made disasters are not repeated? With Santosh Sharma, Bureau Report, India Today.
0: Horrifying visuals and clear signs of major lapses. The big question, of course, who will be held accountable for the loss of those 15 lives? Why are fire safety lapses noticed only after the tragedy? Not just owners, will netas and their bureaucrats be also made to pay? Why should students in particular pay a deadly price for this civic apathy? Why are smart cities urban debt traps? Isn't this a classic case of criminal negligence or dare one say culpable homicide? Siddharth Rutra, senior advocate joining me. Rajesh Panwar is former chief fire officer, Delhi. Also joining me is Arvind Kumar Jain, former DGP UP, and Neelam Krishnamurthy, President Association of the Victims of Upar Tragedy. I want to come to you, Siddharth Luthra, first, because our story has shown severe lapses, single staircase, absence of a fire NOC, illegal commercial conversion of a residential building into a residential zone. Can, therefore, those who owned the building or indeed those authorities who allowed such a building to carry on be held vicariously liable for this systemic criminal negligence? Or do you believe that they will get off the hook given the way the law is?
4: Well, the law is very clear. The owners who built the building in breach of the bylaws or had it, those who were occupying it or using it are also liable to be proceeded against. And lastly, and this is something which is a catch. You know, we don't look at these buildings when they are built in breach of all building bylaws. Then when they're operationalized, when they continue to operate, and throughout that period, the municipal and other authorities turn a blind eye. somewhere along the line,